这里广播电台，听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी निजक्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसन्धानक्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विकवातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
1: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य विंशति नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढम् अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रूसदेशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिकयात्रायै मॉस्कोनगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेशमन्त्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27वें दिनांक पर्यन्तं जापानस्य चतुर्दिवसीय यात्रा

बालोच याजिथी कमिटी या इतु बे वायसे मंगे चाम सांगान रोन यंग डिलाकुकान ओले पासुकान पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मास्तुंग डी बलोचिस्तान यंग।

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

0: इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की

0: संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा

0: परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड हैव क्वालिटी टैलेंट विद अ स्ट्रॉन्ग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल इनॉग्रेट द 2-डे 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टुडे। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
4: The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over

0: With that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kenitza Open title in Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निजाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे के स्टार्टअप पर जोर दिया है कि वो अपनी कोशिशों में इस्तेकलाल को बरकरार रखें और खलाई शोबे का एक मजबूत इको निजाम तश्कील दें, जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखता हो। जनाब मोदी ने ये बात हाल ही में 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs और बानी अफराद के साथ बातचीत के दौरान कही। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने खलाई तहकीक के निजी शोबे पर जोर दिया कि वो जिद्दत तराजी की एक आलमी शनाख्त कायम करे, ताकि दुनिया भर के लोगों को ये महसूस हो कि अगर वो खलाई शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना चाहिए।
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि लागत के लिहाज से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और यहाँ खतरा मोल लेने की मजबूत सलाहियत रखने वाले बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन दोनों खूबियों का इम्तिजाज भारत को आलमी सतह पर खलाई शोबे में तेजी से एक नुमाया मुल्क के तौर पर खुद को कायम करने की सलाहियत फराहम करता है।
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मंत्र है कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: दो रोजा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में होगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के 850 से ज्यादा अफसरान मौजूदा मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजों पर भी गौर व खोज किया जाएगा। اس سالانہ کلیدی نوعیت کی کانفرنس سے داخلی سلامتی، سرحدی انتظام اور ابھرتے ہوئے خطرات سے متعلق انٹیلیجنس، پیراملٹری اور پولیس

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के कार्यक्रम में पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का युगल गायन। राग था अलहैया बिलावल। तबले पर आपके साथ थे मदन लाल ससौदिया और हारमोनियम पर थे कौशिक मित्र। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

0: 9:15 a.m. Don't forget to tune in next week, same day, same time, and same frequency for more on Our Guest. Have a nice day.
1: सुन रहे थे प्रोग्राम आवर गेस्ट, और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams.

घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सावन का सोमवार है जो इस आध्यात्मिक यात्रा का विशेष पड़ाव माना जाता है। और सावन का महीना जो है वो केवल पूजा पाठ का महीना नहीं होता। हम अपने आराध्य, अपने शिव को ध्याते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनसे खूब सारी प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान शिव सुनते भी हैं। और जो ये महीना होता है, जो सावन का महीना, ये हमें प्रकृति के करीब आने का संदेश भी देता है। बारिश में धुली धरती, हरी भरी वनस्पति और ठंडी फुहारे हमें प्रकृति के संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है इस महीने में कि धरती की हर एक क्षय में जीवन है, उसमें सुंदरता है। और इस पूरे महीने सभी ने श्रद्धा भक्ति भाव से उस ईश्वर को ध्याया जो सर्वे सर्वा हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो अनंत हैं। तो इस मंगल कामना के साथ कि आप हर दिन ऐसे ही खुद को साधेंगे और स्वयं को उस ईश्वर को समर्पित करेंगे जो इस सृष्टि का, इस धरती का कल्याण कर रहे हैं।

संगीत सम्राट तानसेन। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी कमल बारोत और महेंद्र कपूर की। तो कार्यक्रम को श्रोताओं आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि आपके घर की छोटी छोटी परंपराएं, जैसा कि हर घर में मतलब संस्कार परंपराएं होती हैं, तो आज आपको उन परंपराओं को के बारे में बताना है जो आपके घर में निभाई जाती हैं, जो एक अच्छा संदेश देती है। जी हाँ, ऐसी छोटी छोटी कौन सी परंपराएं हैं जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसका आप निर्वाह कर रहे हैं सालों दर साल, और जो एक अच्छा संदेश देती है। तो आपको अपने प्रश्न का जवाब देना है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आप अपने जवाब हमें जल्द से जल्द भेजिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, आज महिलाएं सशक्त हैं, उन्होंने वो मुकाम हासिल कर दिखाया है जिसकी वो हकदार हैं, और महिलाओं ने साबित भी कर दिया है कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं। आज की महिला केवल घर की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, विज्ञान, कला और नेतृत्व, हर क्षेत्र में आज महिला अपनी पहचान बना रही है, या यूं कहें कि बना चुकी है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, वे कमाकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं, और उच्च शिक्षा के कारण महिलाएं अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और करियर को लेकर भी सजग हुई हैं। घर के बजट से लेकर बच्चों के भविष्य तक हर बड़े फैसले में महिलाओं की राय अब महत्वपूर्ण है। आज पुरुष भी घर के कामों और बच्चों की परवरिश में हाथ बटाने लगे हैं, और माता पिता दोनों के कामकाजी होने से बच्चे अधिक आत्मनिर्भर और व्यवहारिक भी बन रहे हैं। तो डबल इनकम के कारण परिवारों का रहन सहन और बच्चों को मिलने वाली शिक्षा का स्तर भी आज सुधर गया है। अब परिवार में फैसले लेने से लेकर आर्थिक जिम्मेदारियों तक पति पत्नी के बीच साझेदारी और सहयोग को अधिक महत्व भी दिया जा रहा है। लेकिन बदलती भूमिका के साथ जिम्मेदारियां भी तो बड़ी हैं, इसलिए जरूरी है कि परिवार महिला से केवल अपेक्षाएं ना रखे, बल्कि उसके समय, सपनों और निर्णयों का भी सम्मान करे। साथ ही साथ घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियां केवल महिला की नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य की साझी जिम्मेदारी बनती है। जब बेटा, बेटी, पति, पत्नी और अन्य सदस्य मिलकर घर संभालते हैं ना, तो परिवार में सहयोग और अपनापन बढ़ता है। वो कहते हैं ना, जब महिला आगे बढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए बदलती महिला को समझना, उसका साथ देना, उसकी उपलब्धियों को सम्मान देना एक मजबूत और खुशहाल परिवार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी चिराग। और श्रोताओं, जैसा कि हमने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का एक जवाब हमारे पास आ गया है। जवाब दे रहे हैं नवीन भाटिया जी। वो कहते हैं कि सुबह उठकर नहाकर पूजा पाठ करके ही नाश्ता करते हैं, उनके घर में सभी बगैर नहाए चाय तक भी नहीं पीते हैं वो लोग। तो देखिए कितनी अच्छी आदत है ना, कि होता क्या है कि अगर आप जल्दी उठते हैं, सुबह सब काम समय पर कर लेते हैं, तो एक अच्छा जो समय प्रबंधन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इससे आलस बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि अगर आप नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, समय पर नाश्ता कर लेते हैं, समय पर सब काम कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव काम करने का समय मिलता है। तो बिल्कुल सही कहा नवीन जी आपने। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी सकारात्मक कोशिश की। आज फास्ट फैशन इंडस्ट्री कपड़ों के उत्पादन और विपणन का एक ऐसा मॉडल है जिसमें रनवे और सोशल मीडिया के नए ट्रेंड्स को बहुत कम कीमत और तेज गति से तैयार करके बाजारों में बेचा जाता है। इसमें कपड़ों की गुणवत्ता और टिकाऊपन कम होता है, ताकि उपभोक्ता उन्हें जल्दी बदल कर नए कपड़े खरीदें। और ऐसा हम सभी कर भी रहे हैं। और ये कपड़े होता क्या है कि आज लैंडफिल्स का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े

वेस्ट निकलेगा उसको कम किया जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इस योजना के तहत दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर विशेष कलेक्शन कियोस्क बॉक्स लगाए गए हैं। ये केंद्र रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं और जमा किए गए कपड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। अच्छे और पहनने योग्य कपड़ों को जरूरतमंदों को दिया जाएगा और या फिर उन्हें अपसाइकिल किया जाएगा ताकि उन्हें रीयूज किया जा सके और पूरी तरह से खराब हो चुके कपड़ों को नए धागे, फाइबर या अन्य उपयोगी उत्पादों में रिसाइकल कर दिया जाएगा। और जब आप ये कपड़े दान करने जाएं, देने जाएं, तो वहां लगे QR कोड को स्कैन करके अपनी जानकारी वहां पर आप दर्ज कर सकते हैं और कपड़ा जमा होने के बाद आपको तुरंत एक डिजिटल डोनेशन सर्टिफिकेट यानी कि एक ई रसीद मिल जाएगी। इस योजना के तहत कपड़ों की छटनी और रिसाइकल का काम महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS और NGO को सौंपा गया है, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। तो पहले चरण के तहत दिल्ली के 10 प्रमुख स्टेशनों पर ये अर्पण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 5 स्टेशनों पर ये सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिसमें है पंजाबी बाग वेस्ट, शालीमार बाग, मयूर विहार फेज 1, शाहदरा, रोहिणी वेस्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, मालवीय नगर, हौज खास, द्वारका, मोहन स्टेट, लाजपत नगर। तो यदि आपके पास भी ऐसे पुराने कपड़े हैं जो अलमारी में बेकार पड़े हैं तो उन्हें आप नजदीकी अर्पण केंद्र पर जाकर दान कर सकते हैं और दिल्ली को स्वच्छ और हरा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, वाकई एक सकारात्मक कोशिश पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आप भी इस ड्राइव का हिस्सा बनकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान

मेरा साया। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब हमें आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक ही जवाब आए हैं, और हम अपने श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी अपने जो इस प्रश्न का जवाब है वो शीघ्र अतिशीघ्र भेजें। और मेरे पास एक जवाब है सिमी जी का, जो कि बुराड़ी दिल्ली से लिख रही हैं। वो कहती हैं कि त्योहारों के इस मौसम में अंतर्गत वो रक्षाबंधन पर उनके परिवार में चने की दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा है, क्योंकि चने की दाल को शुभ शगुन के रूप में माना जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि जो पुरानी जो परंपराएं हैं और आज के लोग उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी जो यादें होती हैं वो एक लेगेसी की तरह होती हैं। अगर हम अपने परिवार में इस तरीके की परंपराएं, जो संस्कृति होती है, उसको निर्वाह करते हैं, उसका पालन करते हैं, और देखिए खुद को भी तो अच्छा लगता है ना। तो हमारा आज का प्रश्न भी यही था कि आपके घर की छोटी छोटी जो परंपराएं हैं जो एक अच्छा संदेश देती हैं, या आपको वो उसकी क्या खास बात अच्छी लगती है उस परंपरा की, तो आपको हमें लिख भेजना है fmgoldga@gmail.com पर। तो अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आज सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया जो है वो अभिव्यक्ति का एक आसान माध्यम बन गया, जैसा हम सभी जानते हैं। आज हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और दिन भर में ना जाने कितनी पोस्ट, वीडियो और संदेश हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। हम उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं या फिर उस पर टिप्पणी करते हैं, और कई बार तो हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे उस पोस्ट को आगे साझा भी कर देते हैं, यानी कि शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर एक क्लिक भी हमारी जिम्मेदारी है? किसी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना, अफवाहों को आगे ना बढ़ाना, और किसी की जो निजी तस्वीर है या जानकारी बिना अनुमति साझा नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी ये बातें हमें डिजिटल नागरिक होने का संदेश देती है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है, तभी हम जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन पाएंगे। और किसी बात या विचार को लेकर असहमति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा संदेश आता है जिस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, है ना, उसमें हम सहमत नहीं होते, लेकिन असहमति को आप अपमान में ना बदलें। आपकी जो भाषा है, अगर आप उस पोस्ट पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में वो मर्यादा बना कर रखें, है ना। और क्योंकि आप जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे वही आपके व्यक्तित्व की पहचान कराएगा। और एक और ज़रूरी बात ये कि हर वायरल वीडियो का संदेश सच हो ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय स्रोत से उसकी पुष्टि जरूर करें। तो भाई, अगली बार जब आपकी उंगली शेयर बटन पर जाए ना, तो बस एक पल रुकी और खुद से पूछिए कि क्या ये जानकारी सही है, क्या इसे साझा करना जरूरी है, और क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। याद रखिए, सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज पर प्रभाव डालने की ताकत भी तो है। तो क्यों ना हम सिर्फ अच्छे सोशल मीडिया यूजर ही नहीं बल्कि जिम्मेदार डिजिटल नागरिक भी बने। तो भाई, अगली बार सोच समझ कर पोस्ट करें और उसको अच्छे से जांच कर ही शेयर करें, और सम्मान के साथ ही संवाद

सांझ और सवेरा। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। श्रोताओं, आज बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हम सभी देते हैं। जी हाँ, बात करते हैं गुस्से की। हम सभी गुस्सा करते हैं। हर छोटी बात पर गुस्सा आना इस बात का संकेत है कि हमारा मानसिक या शारीरिक धैर्य कम हो रहा है। तो क्या कारण है कि हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं? हम हर छोटी बात पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि तुरंत हम उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। तनाव, थकान, मानसिक दबाव और चिंता, नींद की कमी हमें चिड़चिड़ा बना देती है और हम असहज महसूस करते हैं और हर छोटी बात पर हमारी प्रतिक्रिया उग्र होती है। तो कैसे एक बेहतर प्रबंधन के जरिए हम शांत और सहज बने रह सकते हैं? तो करना क्या है कि गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देना होता क्या है कि अक्सर स्थिति को और मुश्किल बना देता है। तो जब गुस्सा आए तो सबसे पहले रुकें और तुरंत जवाब ना दें, क्योंकि कुछ पल का विराम हमें सोचने का मौका देता है। गहरी और धीमी सांस लें, आराम से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इससे मन को शांत होने का अवसर मिलता है और अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए बदल लें। संभव हो तो शांत जगह पर जाएं और थोड़ा पानी पिएं या कुछ मिनट टहल लें। खुद से पूछें कि मुझे वास्तव में गुस्सा किस बात पर आ रहा है, क्योंकि कई बार गुस्से के पीछे थकान, निराशा या किसी बात का दुख भी हो सकता है। और जब बात करनी हो तो आरोप लगाने के बजाय अपनी भावना व्यक्त करें। श्रोताओं, याद रखिए, गुस्सा गलत भावना नहीं है। असली बात यह है कि हम उसे कैसे संभालते हैं, उसे कैसे व्यक्त करते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए ना, तो रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए और फिर बोलिए, क्योंकि कुछ पल का संयम रिश्तों में बहुत बड़ी कड़वाहट आने से रोक सकता है। तो एक सही प्रबंधन के जरिए स्वयं को, अपने रिश्तों को गुस्से के दंश से बचाइए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी आया सावन झूम के। और श्रोताओं, हमारे पास एक और मेल आ गया है, वो है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का। आप शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सूर्योदय होने से पहले उठ जाना, हमेशा सफाई से रहना, सादा रहना और साफ रहना, यानी कि एकदम सादा से मतलब शायद कि एकदम जड़ों से जुड़कर रहना और संतोषी बने रहना और ज़रूरत की चीज़ लेना, बड़ों का सम्मान करना, ये संस्कार हमें अपने बड़ों से मिले हैं। और ये कह रहे हैं कि जो संस्कार हमें अपने बड़ों से मिल रहे हैं, हम उन्हें अपने बच्चों में भी आगे दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी इसका पालन जो है वो करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि जो हमारे माता पिता के संस्कार हैं उसको हम सहेज कर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, वो भी उन संस्कारों को सहेजेगा। और श्रोताओं, अब बात करते हैं बारिश की। जैसा कि अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश का जो मौसम होता है ना, अपने आप में बड़ा मनोहारी मौसम होता है। जब रिमझिम हर तरफ होती है और धरती का जो आंगन है वो खुशबू से भर देती है बारिश, मिट्टी की खुशबू और हरियाली हम चारों ओर देखते हैं, तो साथ ही साथ होता है क्या कि जीवन को जो ये बारिश होती है ना, एक नई ऊर्जा देती है। जहाँ बारिश ये जीवन लेकर आती है, वहीं बारिश के बाद अचानक बढ़ने वाली उमस हमारे स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर डालती है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बारिश हुई तो मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन अगर अगले दिन या दो दिन तक बारिश नहीं होती तो ह्यूमिडिटी का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो हवा में नमी बढ़ने लगती है और शरीर का जो सबसे मुख्य कूलिंग सिस्टम है, यानी कि पसीने का जो वाष्पीकरण है, वो रुक जाता है। इसके कारण पसीना जो है वो त्वचा पर ही जमा रहता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। उमस हमारे शरीर और स्वास्थ्य को कई तरीके से प्रभावित करती है। डिहाइड्रेशन हो सकती है, तापमान कम होने पर भी उमस के कारण शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना बहता है। अधिक नमी के कारण शरीर को गर्मी बाहर निकालने में परेशानी होती है, जिससे सुस्ती और बेचैनी महसूस हो सकती है। और जब पसीना ज़्यादा आता है लेकिन नमी के कारण वो जल्दी नहीं सूखता, तो शरीर चिपचिपा और असहज महसूस करता है। लगातार नमी और पसीने से त्वचा पर घमोरियां, खुजली या जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, और फंगल संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है इस मौसम में, क्योंकि नम वातावरण में जो फंगस है, वो फफूंद जो है, वो आसानी से पनप सकता है, खास करके पैरों में, त्वचा के सिलवटों में और लंबे समय तक गीले रहने वाले हिस्सों में। अधिक नमी कुछ लोगों में सांस लेने में असहजता बढ़ा सकती है, विशेषकर जिन्हें पहले से ही सांस संबंधी संवेदनशीलता है। तो बचाव के आसान उपायों की बात करें तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए, क्योंकि पसीना खूब निकल रहा होता है शरीर से, तो पानी की कमी हो सकती है, तो आपको पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, त्वचा को सूखा रखना है। गीले कपड़े अगर हो गए हैं, चाहे वो पसीने से हो गए हैं या आप बाहर से आए हैं गीले हैं, तो आप उन कपड़ों को तुरंत बदल डालें और घर को जो है वो हवादार वातावरण बनाए रखें घर में, यानी कि खिड़की दरवाजे या जो आपका वायर मैश वाला विंडो है उसको लगा लें, ग्लास विंडो को आप खोल लें। तो बारिश का मौसम श्रोताओं भले ही राहत लेकर आता है, लेकिन उसके बाद की जो उमस है ना, उसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो शरीर को ठंडा, त्वचा को सूखा और आसपास के वातावरण को हवादार रखकर आप उमस में होने वाली इस कई परेशानियों से

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बेताब। और श्रोताओं, मौसम बारिश का है और मौसम जो ये वाला होता है ना, ये बीमार कर देने वाला होता है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि वायरल बुखार की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो अगर आपको घर में या किसी को वायरल बुखार है या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जुकाम है, खांसी है, तो समस्या गंभीर होने पर आप उसे नज़रअंदाज ना करें, चिकित्सक के पास तुरंत जाएं। और घर से बाहर निकल रहे हैं तो आज के समय में, इस समय में मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि ये संक्रमण के खतरे को रोकेगा। और साथ ही साथ दूसरों से हाथ मिलाने को, अभी संपर्क जो है वो उसको अवॉइड करें। और दूसरों के करीब बैठकर, मतलब अगर आप बैठते हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का, जैसे आपने मास्क लगाया या कहीं पर भी आप तो ऐसे सतहों को छू रहे हैं, तो आप उसको सैनिटाइज करें या हाथ अच्छे से धोएं। बस ये जो छोटे छोटे जो बचाव हैं कि मच्छरों से बचना है, पानी नहीं जमा होने देना, या बुखार चढ़ रहा है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दिखानी है कि डॉक्टर के पास जाना है या दवाई लेनी है, तो आप इस वायरल बुखार जैसी समस्याओं से बच सकते हैं।

आज़ाद में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, और घड़ी ने इशारा कर दिया है मेरे चलने का। तो फिर किसी और दिन इसी समय पर मुलाकात होगी फिर से कार्यक्रम घर आंगन में। तो मुझे यानी कि प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सदध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन

के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप अगर इस गाने से पहचान गए हैं तो बता दें आपको कि दोस्त नाम छोटा है लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। ये फिल्म हमें बताती है कि सच्चा दोस्त वो नहीं होता

जो केवल खुशियों में साथ दे, बल्कि वो होता है जो गलत रास्ते पर चल रहे इंसान को भी संभालने की कोशिश करे। जी हाँ, बात कर रहे हैं 1974 में आई फिल्म दोस्त की, जिसमें मुख्य भूमिका में थे धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी। फिल्म के नायक हैं मानव, जिनकी भूमिका में है धर्मेंद्र। मानव एक अनाथ युवक है जिसका पालन पोषण फादर फ्रांसिस ने किया। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो अपने पुराने घर लौटता है तो उसे अपने पिता का, जो भी उसको पाल रहे होते संरक्षक का, निधन के बारे में पता चलता है। और उसके बाद मानव अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए मुंबई की ओर बढ़ता है। यही उसकी ज़िंदगी में आता है गोपी चंद शर्मा, यानी गोपी, जिसका चरित्र निभाया है शत्रुघ्न सिन्हा ने। गोपी का जो भूमिका है वो मानव से बिल्कुल अलग है। वो परिस्थितियों से संघर्ष करते करते गलत रास्तों पर चल पड़ा है। दोनों की पहली मुलाकात दोस्ताना माहौल में नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे मानव को गोपी के भीतर छिपा एक इंसान दिखाई देता है, एक अच्छा इंसान दिखाई देता है। यहीं से फिल्म का सबसे खूबसूरत जो पड़ाव है वो सामने आता है कि क्या एक सच्चा दोस्त किसी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। मानव गोपी को पहले को केवल अपना दोस्त नहीं मानता, बल्कि उसे बेहतर जिंदगी की ओर ले जाने की कोशिश करता है और चाहता है कि गोपी अपराध और बेईमानी से दूर होकर ईमानदारी से जिंदगी जिए। मानव उसे काम दिलाने में मदद करता है और दोनों के बीच ऐसे ऐसे करके गहरी दोस्ती बन जाती है। दूसरी ओर मानव की मुलाकात होती है काजल, यानी काजू से, जिसकी भूमिका है हेमा मालिनी द्वारा निभाई गई। दोनों के बीच प्रेम पनपता है। काजल के पिता की भूमिका में थे रहमान। लेकिन कहानी केवल प्रेम दोस्ती की सरल नहीं कहानी, बल्कि ये ऐसी कहानी है जहां हालात बदलते हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं और फिर मानव की ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कहानी को और ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक मोड पर ला खड़ा कर देती है। धर्मेंद्र को आमतौर पर हमने उनकी एक्शन फिल्म्स में ज़्यादा देखा है, रोमांटिक छवि के लिए याद किया है, लेकिन दोस्त में जो उनका किरदार है वो बहुत ही संवेदनशील है।

0: और यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी, और आज बात हो रही है 1974 में रिलीज हुई फिल्म दोस्त के बारे में, जिसमें मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी थे। तो बात करते हैं धर्मेंद्र की भूमिका की। तो हमने बात की कि जहां हमने उनको सिर्फ एक्शन में देखा है या फिर रोमांस में देखा है, यहां पर एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल किरदार हमें धर्मेंद्र जी का देखने को मिला। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ज़्यादातर नेगेटिव या फिर तीखे किरदारों में अपनी पहचान उस दौर में बना चुके थे, लेकिन दोस्त में उनका जो चरित्र है वो केवल एक अपराधी या फिर एक गलत इंसान का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो कि परिस्थितियों की वजह से उसका शिकार होकर उसने अच्छाई उसकी जो है ना वो दब गई, इस तरह का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा का है। तो जब इस फिल्म को हम देखते हैं तो उनके बुरे किरदार से भी हमें प्यार हो जाता है। फिल्म में असित सेन, अनवर हुसैन, अभी भट्टाचार्य, रहमान, कन्हैयालाल कुमारी, नाज, मास्टर बंटी जैसे कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक छोटी सी अतिथि भूमिका है, और ये भूमिका अनक्रेडिटेड रही फिल्म के निर्माण से जुड़ी ये एक ऐसी जानकारी है। बताते हैं कि निर्देशक दुलाल गुहा ने एक इस अतिथि फॉर्मेट के लिए, एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट की थी, और अमिताभ बच्चन जी मान गए थे, जहां पर उन्होंने इस कैमियो के लिए फीस नहीं ली थी। और ये इस फिल्म को और भी ज़्यादा खास बना देती है, क्योंकि उस समय पर अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और हर कोई उनको मतलब हर दर्शक उनको देखना चाहता था। और अगर छोटी सी ही भूमिका में सही, लेकिन अमिताभ बच्चन का उस फिल्म में आना उस फिल्म को और भी ज़्यादा खास बना देता है।

गीत बने वो बेहद प्रभावशाली बने, और इनमें सबसे लोकप्रिय गीत जो था वो है गाड़ी बुला रही है, जिसे महान गायक किशोर कुमार ने गाया। ये केवल ट्रेन पर फिल्माया गया एक साधारण सा गीत नहीं है, इसकी भावना जिंदगी को एक सफर के रूप में देखने की है। रेलगाड़ी यहाँ जीवन की यात्रा का प्रतीक बन जाता है, और रास्ते में मिलने वाले लोग, पिछड़ते रिश्ते और आगे बढ़ता जीवन, इन भावनाओं को इस गीत में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। और इस गीत को हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम के एकदम अंत में। इस गीत के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ गीतकार और किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक की श्रेणियों में नामांकित भी किया गया था। और अब फटाफट से नजर डाल लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे मेल्स पर कि वो इस फिल्म के बारे में या आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहला संदेश जो हमारे पास आया है वो जलालाबाद वेस्ट से है, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निमित आहूजा का। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया जालंधर से जुड़ रहे हैं, और हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से जुड़ रहे हैं। लिखते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज फिल्म दोस्त की फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारी और बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ रहे हैं, और धर्मेंद्र छीपा जी जुड़ रहे हैं। लिखते हैं आज आप चर्चा कर रहे हैं अपने दौर की बेहतरीन फिल्म 1974 की फिल्म दोस्त, जिसमें अभिनय किया धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रविंद्र कपूर ने। गीतकार आनंद बख्शी के लिखे हुए गीतों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और उन गीतों को आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आप इस फिल्म के बारे में बेहतरीन बातें, रोचक किस्से, कहानी और नगमे सुनवा रहे हैं। हम भी प्रोग्राम से जुड़े हैं और आनंद उठा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रही हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। अगला संदेश है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता। गांव लोहागढ़ ठकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह और अविराज जुड़ रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। और लिखते हैं शानदार प्रस्तुति आदरणीय दीदी जी, एक ही फिल्म प्रोग्राम में सुपरहिट फिल्म दोस्त का सदाबहार गीत हम सुन रहे हैं। इशाक मोहम्मद भी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर। और अगला संदेश हमारे पास आया है नलेश्वर नगर से पी एस नोहावकर, निर्मला विशाल और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहर्रेकर। और ये लिखते हैं बहुत ही प्रस्तुतिकरण के साथ बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनने को मिले, और साथ में उम्दा जानकारी भी इस कार्यक्रम में हमें मिल रही है। सुदर्शन मुखिया, अनीता मुखी, शांति नगर, सोनीपत से जुड़ रहे हैं।

और लिखते हैं, आदरणीय विजेता चतुर्वेदी जी, सादर प्रणाम। कार्यक्रम सुन रहे हैं जिससे मैं आज आप बात कर रही हैं फिल्म दोस्त की, जो बिल्कुल हमारे श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। इंदिरानगर भंवरपुर से चंपा देवागन, राधेश्याम देवागन और जगदीश देवागन जुड़ रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश, कपिल, संगीत, संगीता लिपि और दीपाली जुड़ रहे हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और लिखते हैं, सावन मंथ के लास्ट मंडे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आपको भी शुभकामनाएं। और ये श्रोता हमारे जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। तो देखिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने संदेश भेजे हैं अपने इस कार्यक्रम में, और सिर्फ कार्यक्रम को सुनते नहीं हैं बल्कि अपने प्रतिक्रियाएं भी इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करवाते हैं अपने मेल्स के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, और भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस फिल्म की जो शूटिंग हुई है वो ज़्यादातर जो कुछ हिस्सा है वो पहाड़ों का दिखाया गया है, तो ऐसा माना जाता है। हालांकि इसको पूरी तरह से नहीं कहा जाता, कुछ पहाड़ी एरिया में जहाँ पर धर्मेंद्र जी के गांव का जो सीन दिखाया गया है वो उन जगह का दिखाया गया है जो एक पहाड़ी एरिया है, और फिर उसके बाद मुंबई के ही स्टूडियोज़ की शूटिंग की गई है। और उस दौर में इस फिल्म को बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को इस फिल्म में जो इमोशंस डाले गए हैं वो लोगों के दिलों को ज़रूर छू के गए। और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की मजबूत दोस्ती को भी दिखाया गया है, और शत्रुघ्न सिन्हा को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला था। और इस तरह से जो 1974 की ये ऐसी फिल्म है जो दोस्ती को केवल एक मनोरंजन के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि दोस्ती के मायने सिर्फ ये नहीं है कि मिले और काम हो गया। दोस्ती के मायने ये है कि जहाँ हम दोस्त को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये एक और गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। केंद्रीय वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत घट्टो घट्ट 8-9 होर देशों के समूहों अते अलग अलग देशों नाल मुक्त व्यापार समझौते लई गलबात कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज मास्को विच 27वें भारत रूस अंतर सरकारी कमिशन की सह प्रधानगी करनगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवावां की मुढ़ली प्रीख्या विच कथित बेनेमियां की सीबीआई तो जांच की मांग करने वाली एक पटीशन से केंद्र ते झारखंड सरकार नूं नोटिस जारी किए ने। रेलवे ने रेलवे स्टेशन ते मुसाफरां नूं पीण वाले साफ ते सुरक्षित पानी नूं यकीनी बनाउण लई एक विशेष सफाई मुहिम शुरू की है। ते पंजाब विच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत हुण तक 17,000 मकानां दी उसारी दा काम मुकम्मल हो चुका है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत घट्टो घट्ट 8-9 होर देशों के समूहों अते अलग अलग देशों नाल मुक्त व्यापार समझौतों लई गलबात कर रहा है। इन्हां देशों का सांझे तौर पर कुल घरेलू उत्पाद

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 75% आलमी तजारत का इहाता करने की खातिर मजीद 8 से 9 मुल्कों के ग्रुपों के साथ आज़ाद तजारती मुआहदों पर बातचीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने JPSC इम्तहानात में

0: 18वीं ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का अहतमाम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने लखनऊ में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तहकीक और इतलाती निज़ाम और लखनऊ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किया है। इस फोरम का इनेकाद भारत की ब्रिक्स सदारत के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मंतरूफ के साथ तजारत मीशत साइंस टेक्नोलॉजी और सकाफत में ताउन IRIGC TEC से मुतालिक 27वीं भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। जनाब एस जयशंकर रूस के अपने हम मनसब सेर्गी लवरोफ के साथ भी मीटिंग करेंगे और इलाकाई बैन अक्वामी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। खुराक को डब्बा बंद करने के सनतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि PMFME स्कीम से अब तक 2 लाख से ज्यादा खुराक को डब्बा बंद करने से मुतालिक बहुत छोटे इदारों को फायदा हुआ है। आज नई दिल्ली में PMFME कंक्लेव से खिताब करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि कुल मुस्तफिदीन में से तकरीबन 80% पहले सिलसिले के इंटरप्रेन्योर हैं और इनमें से 44% खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में इस स्कीम का आगाज हुआ था और इसने 10 लाख बराह रास्त रोजगार फराहम किए।
1: PMFME की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: दो रोज़ा PMFME कॉन्क्लेव में इंटरप्रेन्योर माहरीन और मुतल्लिका फरीक शिरकत कर रहे हैं ताकि खुराक को डब्बा बंद करने के शोबे में इख्तरा मालूमात के तबादले और तरक्की को फ़रोग दिया जा सके। सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 400 से ज़्यादा शुरका इसमें शिरकत कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लखनऊ जोनल ऑफिस ने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। तलाशी की यह कार्रवाई काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम के कानून के तहत की गई। टेस्ट क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में दूसरे दिन पहली इनिंग्स में भारत की पोजीशन मजबूत है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने शानदार 117 रन बनाए। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 63 और शुभमन गिल ने 50 रन स्कोर किए। भारत ने कल के दिन खेल के खिताम पर 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था और भारत को 1-0 की सबकत हासिल है। ये मैच जीतकर भारतीय टीम क्लीन स्वीप करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका सीरीज को बराबर करना चाहेगा। भारत को इस मैच में कामयाबी हासिल करना जरूरी है ताकि आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की फाइनल दौड़ में वो चौथे मकाम पर पहुंच सके। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सरफहरिस्त है, जबकि जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 75% आलमी तजारत का अहाता करने की खातिर मजीद 8 से 9 मुल्कों के ग्रुपों के साथ आजाद तजारती माहदों पर बातचीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने JPSC इम्तहानात में बेजाबतगियों के सिलसिले में CBI तहकीकात से मुतालिक एक उज्रदारी पर मरकज को नोटिस जारी किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में नवी कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में तजारत इकतसादी उमूर साइंसी तकनीकी और सकाफती इश्तराक पर भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में कोलंबो में पहली इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पोजीशन मजबूत है। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन बनाए। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries aiming to cover 75% of global trade. Supreme Court issues notice to Centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External

0: BRICS Sherpa and Secretary Economic Relations, Ministry of External Affairs, Sudhakar Dalela said, India's BRICS chairship is guided by a people-centric approach based on the principle of humanity first. Addressing the inaugural session of the 18th BRICS Academic Forum in Lucknow, Mr. Dalela said India has focused on resilience, innovation, cooperation and sustainability during its BRICS chairship. He said more than 400 meetings have been organized across nearly 30 cities in the country. India has called for diversified, adequate, predictable and sustained international finance for land restoration and drought resilience. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav stated this today at the Ministerial Dialogue on Innovative Financial Mechanisms for Healthy Land and Drought Resilience during the 17th Conference of Parties COP17 of the UN Convention to Combat Desertification at Ulaanbaatar in Mongolia. Mr. Yadav said land restoration is not a cost but an investment in food, water, biodiversity, livelihoods and long-term resilience. The water level of the Ganga continues to rise in Bihar, causing flooding in low-lying areas of the state. We have more from our correspondent.
1: Bihar, which is facing a shortage of rainfall, is seeing the water level of Ganga River continue to rise in Patna, Vaishali, Bhojpur, Buxar, Bhagalpur, Munger, Samastipur and Begusarai districts. Crops standing on hundreds of acres of farmland have been damaged. According to the Central Water Commission, the water level of the river has risen above the danger mark at all major ghats in Patna. In view of the worsening flood situation, Chief Minister Samrat Chaudhary spoke to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari over the phone and apprised him of the gravity of the situation. West Bengal Chief Minister has assured prompt action in this regard. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day one, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
3: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
5: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
6: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
7: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता।

0: आकाशवाणी समाचार नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
2: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं।

0: स्वयं से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुस जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुस जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुस जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा

0: कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकेंड। श्रोताओं, आप सब जानते हैं ये जो वक्त है, ये वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। और आज इस सफ़र में आपकी हम सफ़र रहूँगी मैं, आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, वे हमारी यादों में बड़े होते हैं। सचिन पिलगांवकर, जी हाँ, हमारे आज के कलाकार एक ऐसे ही कलाकार हैं। कैमरे से उनका रिश्ता है ना, वो तब शुरू हुआ जब वे महज 4-5 साल के थे। 1962 की मराठी फिल्म हाँ माझा मार्ग एकला से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और लगभग 65 फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। फिर एक दिन वही बच्चा बड़ा हुआ और गीत गाता चल का श्याम, बालिका वधू का अमल, अखियों के झरोखों से का अरुण और नदिया के पार का चंदन, ये बनकर हमारे घरों का हिस्सा बन गया। और इस सफ़र की शुरुआत करते हैं हम उस गीत से जिसमें सचिन की मासूमियत, रोमांस और उस दौर की सादगी तीनों एक साथ ही दिखाई देते हैं। तो बताइए ये कौन सी फिल्म का गाना है और आपको सचिन की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप उनके किस किरदार को आज भी याद करते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम का पहला गीत।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या

फिल्म बालिका वधू और आवाज अमित कुमार की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। और आप ये जो हमारे कलाकार हैं इनको आज सुन रहे हैं, इनके बारे में सुन रहे हैं। तो हमारे कलाकार कौन हैं? जी हाँ, कलाकार हैं सचिन पिलगांवकर। बालिका वधू के अमल से नदिया के पार के चंदन तक आते आते सचिन की स्क्रीन इमेज बदलती चली गई। गीत गाता चल में श्याम और नदिया के पार में चंदन, दोनों किरदारों में ना एक सहज देसीपन और अपनापन था, है ना। और यही वह दौर था जब सचिन किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि अपने घर के लड़के की तरह लगते थे। नदिया के पार का संगीत और उसकी मिट्टी की खुशबू आज भी वैसे ही ताज़ा है, है ना। और आपको इस फिल्म के सभी गाने आज भी याद होंगे, इसका हमें यकीन है। तो इस फिल्म से आइए सुनते हैं ये गाना जिसमें गुंजा के साथ चंदन बड़ा भला सा लगा था।

जी हाँ, ये बटुहिया तो जा रहा है प्रेम की दिशा में लेकर अपने इस गाड़ी को। और हमारे साथ देखिए आप जुड़े हैं, कौन है? देवशंकर तामुरिया जी, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और इनका पोता मास्टर एल कबीर। और ये सब हमारे साथ जुड़े हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डूंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से। श्रोता आप सुन रहे हैं फिल्म नदिया के पार का ये गाना, जिसमें सचिन के साथ थी गुंजा। गुंजा कौन थी आप मुझे बताइएगा। और हम लोग सुन रहे हैं इस गीत को जिसे गाया है यहाँ पर हेमलता के साथ जसवीर सिंह ने। तो आप हमें बताइएगा कि ये कौन, आपको इस फिल्म का कौन सा दृश्य सबसे ज़्यादा पसंद है और आप इसके बारे में अपने मन में कितनी कितनी बातें लेकर के चलते हैं। देखिए हमारे साथ ना जुड़े हैं जी, कौन है? धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। और ये कह रहे हैं कि आज आप मशहूर फिल्म अभिनेता सचिन के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, रोचक किस्से और नगमे सुनवा रहे हैं। तो इन्हें ये गाना बहुत पसंद आया, गीत गाता चल के, गीत भी हमें बहुत पसंद है। ये हम ये लिख रहे हैं तो हमें पता है, तो वो भी गाना हमारी इस लिस्ट में शुमार है। तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बने रहिए। और आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप हमारे साथ ना 3 बजे से भी जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे बीते दौर की यानी गोल्डन एरा की बेहतरीन कव्वालियाँ। मौजूद रहूँगी मैं आपके साथ। अभी आप सुन रहे हैं नदिया के पार का ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलाकार सचिन की, और अभी हमने सुना फिल्म नदिया की पार का ये गीत। नदिया की पार ना एक ऐसी फिल्म थी जिसने आज भी लोगों के मन में एक अलग ही जगह बनाई हुई है। नदिया की पार के बाद एक और फिल्म थी सचिन की, जिसका नाम है अखियों के झरोखों से। इसमें सचिन बने थे अरुण और रंजिता बनी थी लीली। ये प्रेम कहानी सिर्फ मिलन की कहानी नहीं थी, इसमें प्रेम, बीमारी, बिछोह और स्मृति सब कुछ था। शायद इसीलिए अरुण का किरदार आज भी हमें याद रह जाता है। सचिन की उस मासूम रोमांटिक छवि को इस फिल्म ने जैसे मुकम्मल कर दिया था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अखियों के झरोखों फिल्म की बात करें और इस फिल्म का गीत आपको ना सुनाए। लेकिन ना, इसका मैं एक गीत आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो इस किस्म का गीत है जो बहुत अच्छा लगता है। और सच में इसमें एक इंतज़ार है, एक बेकरारी है, और इस तरह के गीत को सुन के लगता है कि सच में हम कहीं पे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और बस देखिए वो बस आ ही गया।

वीना मस्किन और आशीष राजा, और ये हमारे संग ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे संग रेगुलर कनेक्ट है और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हैं और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ जुड़े हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, कपिल गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, और ये इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, ये है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है जानकर हमें अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं, देखिए स्वर्ण सिंह हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संग बने रहिए, आपके लिए गाने और भी हैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सचिन की, तो हम अगर सचिन जी के बारे में बात करते हैं तो आपने एक फिल्म आपको अच्छे से याद होगी। जी मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ आप बताइए मुझे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी कलाकार को सिर्फ उसकी छवि में कैद कर लेना ठीक नहीं होता और उसके साथ में एक नाइंसाफी होती है। सचिन के भीतर अभिनेता के साथ एक बेहद अच्छा कॉमिक सेंस भी था। आगे चलकर उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और मराठी सिनेमा को नवरी मिले नवरायला, अशी ही बनवा बनवी, आमच्या सारखे आमहिच और नवरा माझा नवसाचा जैसे यादगार फिल्में दी। अशी ही बनवा बनवी में उन्होंने सुधीर और उसकी महिला छद्म पहचान सुधा वाला बेहद लोकप्रिय हास्य किरदार भी निभाया था। अब क्या है कि अब जरा सा गंभीर अरुण जो आंखियों के झरोखों में था, वहां से अब हम आपको ले चलते हैं सचिन के बेहद शरारती अंदाज की तरफ, जो है सत्ते पे सत्ता का सनी। गाइए सुनते हैं ये गीत।

शैलेंद्र सिंह और हेमलता की आवाज़ में आप सुन रहे हैं अखियों की झरोखों, इस फिल्म से ये गीत। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। ये हैं कौन है, गोविंद गोवर्धन बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं, तुलसी मस्किन।

फिल्म सत्ते पे सत्ता में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ आर डी बर्मन, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और गुलशन को। और देखिए, हमने ये गाना आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इसमें सचिन का वो मजाहिया अंदाज आपको जरूर याद होगा जो उन्होंने हम सभी के दिल में एक अलग ही छाप छोड़ी थी। सनी बहुत प्यारा सा बेटा, बहुत प्यारा सा भाई। और आपको अगर याद हो तो हम इनकी बात कर रहे हैं सचिन की, तो अगर इनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की कहानी ही यहाँ पर आपको हम नहीं बता रहे हैं, उनकी निजी जिंदगी भी सिनेमा से ही होकर गुजरती है। नवरी मिले नवरायला के दौरान उन्होंने अभिनेत्री सुप्रिया सबनिस को निर्देशित किया था। दोनों ने 1985 में शादी की और आगे चलकर सचिन सुप्रिया की जोड़ी मराठी सिनेमा और टेलीविजन की लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हुई। उनकी बेटी श्रेया पिलगांवकर भी इसी अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, यानी यहाँ एक पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ियों तक अभिनय का रिश्ता दिखाई देता है। और देखिए, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, गायक और टेलीविजन कलाकार सचिन ने माध्यम बदलते रहे मगर उनके काम करने की ऊर्जा नहीं बदली। और आपको पता है, हाल में ना वे शफक नाम से गजलें लिखने के लिए भी चर्चा में रहे हैं। जी हाँ, वो गजलें भी लिख रहे हैं। तो शायद सचिन पिलगांवकर के लिए इससे बेहतरीन विदाई नहीं हो सकती कि हम उस गीत की तरफ लौटें जिसमें उनकी पूरी शुरुआती पहचान जैसे एक ही पंक्ति में समा जाती है, यानी चलते रहना, गाते रहना और अपनी धुन बनाए रखना।

श्रोता आप सुन रहे हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चलकर ये गीत। बस हमारी जो घड़ी है वो इशारा नहीं कर रही है कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, तो बस आपको बता दूं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हाँ, हमारे संग जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, और इन्हें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इन्हें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, और इन्हें इनकी मतलब सचिन जी की नद्या के पार सबसे अच्छी फिल्म लगी है। फिर हमारे साथ हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से है नारायण इंगले, सोपान तैड़े, आशीष मुरहेकर, और हमारे साथ प्रकाश वर्मा जी हैं, और ये हैं, शुक्रिया भाई आप मुझे दीदी बोलकर बुला रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से। फिर हमारे साथ हैं देखिए धर्मेंद्र शिपा जी लिखते हैं कि इन्हें अभिनेता सचिन के बारे में रोचक किस्से और नगमे आप सुनवा रहे हैं, प्रोग्राम का आप आनंद उठा रहे हैं, शुक्रिया, उठाते रहिए प्रोग्राम का आनंद। इसके बाद भी हम आपको लेकर आ रहे हैं कव्वालियाँ मैथिली मेलोडीज़ में, तो आप अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी सराली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये हुए पूरे 18 सेकंड। आइए, आपका स्वागत है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर सिर्फ गीतों, गजलों और नगमों का ही नहीं बल्कि यादगार फिल्मी कव्वालियों का भी दौर रहा है। कव्वाली मूल रूप से ना सूफी परंपरा से जुड़ी एक ऐसी गायन शैली है जिसमें सुर, शब्द, ताली और सामूहिक गायन मिलकर एक अनोखी महफिल सजाते हैं। समय के साथ फिल्मकारों और संगीतकारों ने इस विधा को बड़े पर्दे पर उतारा और फिल्मी कव्वालियों ने श्रोताओं के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली। देखिए, फिल्मी कव्वालियों को लोकप्रिय बनाने में नौशाद, रोशन, रवि, ओपी नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन जैसे संगीतकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अगर किसी एक नाम को किसी फिल्मी कव्वाली का बादशाह कहा जाए तो वो है रोशन साहब, है ना? और रोशन साहब की जो फिल्म है वो उनकी कव्वालियों से जानी जाती हैं। और अगर हम कव्वाली की बात कर रहे हैं तो बरसात की रात की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए सुनते हैं हमारे मैटनी मेलोडीज की पहली कव्वाली।

देखिए, पूरी कव्वाली बहुत बड़ी है और इसका जो दूसरा भाग जो है ना, वो भी मैं आपको सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ये रोशन साहब की बहुत मुकम्मल एक धुन है, एक ऐसी कव्वाली है ये, जो आज भी हम सभी अगर बात करें कव्वालियों की, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो कव्वाली आती है वो शायद यही होती है, बरसात की रात की। इस कव्वाली में जो स्वर था वो आप सुन रहे थे मन्ना डे के साथ आशा भोसले, फिर इसमें सुधा मल्होत्रा भी है, मोहम्मद रफ़ी भी हैं, खैर वो आगे के भाग में है तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। लेकिन अब अगर हम रोशन साहब की बात कर रहे हैं और फिल्म दिल ही तो है कि कव्वाली आपके साथ ना साझा करूं, ऐसा कैसे होगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि फिल्मी कव्वालियों की जो सबसे बड़ी खूबी रही है ना, वो इसमें सिर्फ इनकी रूहानियत ही नहीं बल्कि शरारत, नज़ाकत

और नुकझुक का रंग भी इन कव्वालियों में हमें देखने को मिला है। जैसे आगे आपको सुनाऊंगी एक और एक मेरे महबूब फिल्म का है, और इस तरह की जो एक कव्वालियों में होता है कि दिलकश पेशकश होती है, किसी महफिल में सजी मोहब्बत की तकरार होती है, और ना इन गीतों में सुरों के साथ अदाओं का भी अपना एक जादू रहता है ना, मानेंगे ना। और यही वजह है कि बरसों बाद भी ये कव्वालियाँ सुनते ही पुरानी दौर की महफिलें आंखों के सामने ताज़ा हो जाती हैं। तो बस हम बात कर रहे हैं रोशन साहब की, तो ये गाना ये मतलब कव्वाली आपको ना सुनाऊँ ऐसे कैसे होगा, सुनिए और लुत्फ लीजिए उस दौर की मशहूर कव्वालियों का।

जी हाँ, ये जो फिल्म आप सुन रहे थे कव्वाली, ये फिल्म दिल ही तो है, इस फिल्म से थी। आशा भोसले के साथ कोरस था, और आपने देखा होगा कव्वाली मतलब तालियां, और क्या खूब रोशन साहब का म्यूजिक इस कव्वाली में। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कव्वाली की जिसके बारे में बस कुछ नहीं कहूँगी, बस आपको सुनवाऊंगी। लेकिन ना, आपको इतना बता दें, कव्वालियाँ सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होती हैं, बल्कि ये ना एक हिंदुस्तानी संगीत की गंगा जमनी तहजीब को भी बहुत खूबसूरती से संजोती हैं। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मुबारक बेगम और सुमिल कल्याणपुर जैसी आवाज़ों ने इन्हें एक जीवंत महफिल का रूप दिया है। सवाल जवाब का अंदाज होता है कव्वालियों में, तालियों की थाप और शब्दों की मिठास। ये ना एक अलग ही माहौल पैदा करती है, एक अलग ही रूहानियत उस पूरे माहौल में घुल जाती है। तो हम इस कव्वालियों के दौर में आपको लिए चल रही हैं। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। जी हाँ, इस फिल्म की एक कव्वाली सुना रही हूँ आपको, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और बस आप बने रहिए और इस कव्वाली का आनंद उठाइए।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये कव्वाली जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। हमारे साथ हमारे बहुत से दोस्त जुड़े हुए हैं। ये हैं डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से। लिखते हैं कि नमस्कार, भारतीय फिल्मों में 60 और 70 के दशक में फिल्म में कव्वाली का चलन था और कव्वालियाँ का भी को भी फिट फिल्म को सफल बनाने में अहम भूमिका होती थी। अच्छा, आप लिख रहे हैं कि कव्वालियों की भी फिल्म को सफल बनाने में अहम भूमिका होती थी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हमारे साथ जुड़ी हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, और इन्हें कव्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है, बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया तुलसी मस्किन जी। फिर सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मस्किन दादा जी, और ये हमें लिख रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, और आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखिए, ये होता है कि आफ्टरनून मेलोडी में शुरुआत क्लासिक कव्वाली जो हमने की थी, ना तो कारवा की तलाश है, ये इन्हें बहुत अच्छी लगी। तो हमारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम बात कर रहे हैं कव्वालियों की। अब देखिए, कव्वालियों में बात हम कर रहे हैं एक ऐसी कव्वाली की। अब जो अगली मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो जो कव्वाली है वो है फिल्म मेरे महबूब की। अब मेरे महबूब की जो कव्वाली है, मेरे महबूब का आपको पता होगा संगीतकार नौशाद थे, और इस फिल्म का जो आपके साथ मैं कव्वाली यहाँ पर बांटने जा रही हूँ उसे गाया है जी हाँ आशा भोसले ने। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक किसी भी फिल्म में शानदार कव्वाली का होना लगभग परंपरा माना जाता था। और ना, यह प्रेम की महफिल हो या दोस्तों की नोकझोंक हो या फिर सूफियाना रंग हो, हर अवसर के लिए संगीतकारों ने ऐसी कव्वालियाँ रची हैं जो समय के साथ और भी कीमती होती चली गईं। शायद यही वजह है कि बीते दौर की फिल्मी कव्वालियाँ आज भी महज गीत नहीं बल्कि यादों की एक महफिल बनकर हमारे साथ चलती हैं। अब ये जो मेरे महबूब का जो कव्वाली आपके सामने रखने जा रही हूँ, आपको खूबसूरत सी साधना याद होगी, साथ में अपनी सहेलियों की वो ये कव्वाली गा रही हैं, और इसमें बस उनके महबूब में क्या क्या खूबियाँ हैं वो हम भी यहाँ पर एक बारी और सुन लेते हैं। तो सुनते हैं मेरे महबूब की ये कव्वाली।

आप सुन रहे थे मेरे महबूब फिल्म से कव्वाली, और अब चलते चलते आपको बरसात की रात की वो कव्वाली सुनाना ज़रूर चाहूँगी जिसके बारे में हम आपसे शुरुआत में बात कर रहे थे। इसमें स्वर है मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश और साथ हैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा। तो ये कव्वाली अपने आप में एक कल्ट कव्वाली है, और कव्वालियों की अगर हम बात करें और इस कव्वाली को ना सुनाई जाए तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और देखिए, इसको लिखा था साहिर साहब ने, तो सुनते हैं ये कव्वाली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैथनी मेलोडी, और इस कार्यक्रम को आपने सुना मेरे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, और आइए अब हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, हम आज लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रूबरू, जहां हम अदब, फिक्र और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बराहे रास्त गुफ्तगू करते हैं। आज हम आपके रूबरू करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने उर्दू अदब, तहकीक, अफसाना निगारी, शायरी और फरहंग नवेसी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा। डॉक्टर साहिबा ने अपनी तख्लीकात के ज़रिए उर्दू शायरी और नसर को नई जहतें अता की हैं। उनकी तहरीरों में न सिर्फ फ़िक्री गहराई और जमालियाती नज़ाकत है, बल्कि असरी मसाइल और इंसानी जज्बात की भरपूर अक्कासी भी मिलती है। ये हमारी खुशबख्ती है कि आपने हमारी दावत कबूल की। हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया, आदाब।
1: और आइए अब उनकी ज़िंदगी के सफ़र को हम जानते हैं, उनसे सवाल करें। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा का ताल्लुक आगरे के एक मुक्तदर सैयद सूफ़ी और अदबी खानवादे से है। उनके जद अमजद असगर अकबर आबादी सूफ़ी शायर थे, जबकि उनके ताया अल्लामा मैकश अकबर आबादी तसव्वुफ़ और इकबाल शनासी के हवाले से मारूफ हैं। वालिद सैयद अहमद अली शाह जाफरी आला अफसर होने के साथ साथ अरबी व फारसी के आलिम और शायर थे, और वालदा नजमा जाफरी साहिब दीवान शायरा थीं। यकीनन इस अदबी माहौल ने बचपन ही से नईमा पाशा को अदब की तरफ मायल किया। तो डॉक्टर साहिबा, आप अपने ख़ानदान के मुतालिक कुछ हमारे सामईन को बताना चाहेंगी?
2: जी, मैं अपने ख़ानदान के बारे में, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम उर्दू वाले हैं।
1: जी,
2: शुरू से ही हमारे ख़ानदान में उर्दू का, ये समझिए तकरीबन 6 पुश्तों से माहौल और रिवायत चली आ रही है। मीर अनीस ने कहा था कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में
1: जी।
2: और मैं अपने लिए इजाफा करूंगी कि मैं 6ठी पुश्त में हूँ अल्लामा असगर अकबर आबादी की, जो कि मीर व नज़ीर के हम असर शायर थे
1: जी।
2: सूफी बुजुर्ग थे और उनकी शायरी जो है वो पूरी सरतापा तसव्वुफ़ के रंग में है
1: जी।
2: उसके बाद उनकी तमाम जो भी मेरे परदादा वगैरह जो हुए सब शायर हुए, उन्होंने फारसी में भी कहा, उर्दू में भी कहा।
1: बिल्कुल।
2: फिर ताया साहब जो मैकश अकबर आबादी, वो तो ज़्यादा इंडो पाक के मशहूर शायर रहे हैं। मेरे वालिद हालांकि सिविल सर्विस में थे, IAS ऑफिसर थे और राजस्थान कार्डर थे, इसलिए अकबर आबाद में मेरा दादा रहना नहीं हुआ। मेरी पैदाइश और परवरिश और इब्तदाई तालीम सब राजस्थान के गुलाबी शहर राजधानी जयपुर में हुई।
1: बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि आपकी पैदाइश जयपुर में हुई, इब्तदाई तालीम जो है कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू और अंग्रेज़ी में मास्टर किया
2: जी।
1: बाद हज़ार जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपने दिल्ली में 30 साल तक एक कोचिंग सेंटर चलाया है
2: जी।
1: जहां तलबा खुसूसन तालिबात को ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए तैयार किया। ये खिदमत आपकी समाजी वाबस्तगी और इल्मी जज्बे की अक्कास है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बाज़ाब्ता किसी यूनिवर्सिटी या किसी दीगर जो शोबजात होते हैं उसमें अपनी खिदमत न देकर कोचिंग का इंतखाब क्यों और कैसे किया?
2: देखिए, उसमें उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि शादी के बाद ख़वातीन के लिए घर की जिम्मेदारी सबसे पहली होती, अव्वल अपने ख़ानदान को देखना, और माँ बनने के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी औलाद की तालीम और तरबियत
1: जी।
2: क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज देना जो है वो बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी नहीं है
1: जी।
2: ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत भी जो है वो सिर्फ

0: माँ की गोदी होती है, जैसा कि कहते हैं कि पहली दरसगाह माँ की गोद होती है।
1: जी
0: मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं बाज़ाब्ता नौकरी करती, जबकि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफ़र नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जामिया मिल्लिया में लेक्चरशिप ऑफ़र की गई थी। उस वक्त जो हेड थे उनवान चिश्ती साहब,
1: जी
0: जब मेरी मैं PhD पूरी हुई। लेकिन मैंने इसीलिए कि बच्चे छोटे थे, और आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि मुलाज़मत फिर मुलाज़मत होती है, उसमें अपना बस नहीं चलता। मैं अपने घर और बच्चों को वो वक्त नहीं दे पाती
1: जी
0: कि जो उनका हक था,
1: बिल्कुल।
0: और इसीलिए मैंने पहली बात तो ये कि मुलाज़मत नहीं चाहिए,
1: जी
0: और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रही।
1: नहीं बिल्कुल, आप तो कामयाब रहे। आपकी शादी कब हुई थी, यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद या दौरान तालीम ही आपकी शादी हुई जिसकी वजह से ये सोच बनी? जी
0: मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से MA किया
1: जी,
0: और ये वो ज़माना था जो शोबे उर्दू का अलीगढ़ में सुनहरा दौर था, क्योंकि आले मसरूर साहब, खुर्शीदुल इस्लाम साहब, खलील रहमान आज़मी साहब, शहरयार साहब, काजी अब्दुल सत्तार साहब, मतलब कहाँ तक गिनाऊँ, मोइन हसन जज्वी साहब, ये सब हमारे उस्ताद थे। उसके बाद फौरन ही मैंने PhD के लिए मतलब रजिस्टर अपने आप को करवा लिया था। मैं खुर्शीदुल इस्लाम साहब के अंडर में नज़ीर अकबर आबादी की फरहंग पे काम मैंने शुरू
1: जी,
0: किया।
1: जी।
0: लेकिन इत्तेफाक, खुशकिस्मती जो भी कहें, 6-7 महीने में ही शादी हो गई।
1: शादी हो गई
0: और उसके बाद, शादी के बाद मैं अलीगढ़ नहीं रही। अगर मैं अलीगढ़ ही रहती तो शायद मैं वहीं पे अपना काम पूरा करती। मेरे शौहर उस वक्त EPI एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, और उनका उस वक्त तकर्र जो है वो गुजरात के एक छोटे से शहर तलाला में था, तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ा। मतलब हवाई जहाज का रिवाज नहीं था, ऐसा नहीं है
1: जी, जी।
0: लेकिन इस्तेमाल में नहीं था,
1: इस्तेमाल में नहीं था,
0: तो 2 दिन 2 रातें लगती थी वहां तक पहुंचने में। तो जाहिर है कि फिर मैं अलीगढ़ से तो जारी नहीं रख सकती थी। 1 साल तक मैं वहीं रही, जो बिल्कुल आदमजात
1: कोई पता नहीं था,
0: क्या पता नहीं था, सिवाय शेरों वगैरह के।
1: जी।
0: और उसके बाद फिर खैर फिर और जगह मैं आसाम वगैरह में कुछ कुछ अरसे में रही, और यहाँ पे मैंने शादी के बाद मैंने अंग्रेज़ी में MA किया। और ये बात मैं एक तस्दीक कर दूँ कि अंग्रेज़ी का MA मैंने क्योंकि फासलाती निज़ाम से किया था, इसलिए अलीगढ़ से नहीं बल्कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया,
1: अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया,
0: और PhD जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की, क्योंकि वो दिल्ली ज़ाहिर है के में था। तो ये 2 तालीमें। उसके बाद मैंने नेट भी क्लियर किया, और वो भी ज़ाहिर शादी के बाद ही किया, और जो कुछ और डिप्लोमा वगैरह किए एक सहाफत वगैरह में। तो बाकी की तालीम जो है MA के बाद की
1: जी,
0: वो सब शादी के बाद हुई,
1: सब शादी के बाद हुई। तो ये जहाँ शादी करके आप गईं, वहाँ पे जाहिर सी बात आप बता रही हैं कि शादी के बाद आपने PhD भी की, नेट भी किया और दीगर सर्टिफिकेट के कोर्सेज भी किए, तो वहाँ का माहौल था और आप जहाँ गई थी वहाँ का माहौल क्या था, दोनों में कोई फ़र्क था?
0: बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं जिस ख़ानदान से आ रही थी वहाँ कायदे से सब कॉन्वेंट के पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उर्दू के आशिक थे, और उर्दू उनकी उड़ना बिछोना थी। जहाँ ब्याह की आई वहाँ उर्दू से नाबलद थे सब।
1: तो
0: सबसे बड़ा फ़र्क आप समझ लीजिए यही है।
1: तो फिर वहाँ जाकर आपने उर्दू सिखाई?
0: नहीं, ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि सीखे सिखाए लोग मुश्किल से सीखते हैं।
1: जी नहीं, जैसा आपने बताया ना कि माँ की गोद में ही सारी परवरिश होती है, तो जब आप अज़दवाजी ज़िंदगी में आ गई तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी हुए, तो उनके साथ कैसा रवैया रहा?
0: नहीं, बच्चों को मैंने, हालांकि बच्चे भी मेरे कॉन्वेंट में ही पढ़े हैं यहीं पे दिल्ली में ही, लेकिन मैंने शुरू से ही उनको उर्दू से नाबलद नहीं रखा, और उसके बाद इतना कम से कम पढ़ा दिया कि वो उर्दू पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग, कुछ एक आध जो हैं वो लिख भी लेते हैं।
1: जी, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, जैसे मुझे पता लगा कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, ये शर्फ मुझे मिलेगा, तो उसमें मैंने देखा कि आपने तालीम के दौरान ही, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रही थी उस ज़माने में, बहुत से एजाजात हासिल किए, तो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें।
0: असल में मैंने अफसाना निगारी बड़े बचपन से शुरू कर दी थी, और अगर आप कहें इसको मुबालगा ना समझे, तो 8 साल की उम्र में मेरी पहली कहानी राजस्थान पत्रिका में हिंदी में छपी थी, क्योंकि उस वक्त तक उर्दू नहीं आती थी कि लिखना शुरू कर दिया था 7 साल में, लेकिन शायद जो हुई वो 8 साल
1: की।
0: उसके बाद खैर फिर उर्दू सीखी, और ख़ास तौर पे सीखी क्योंकि आपको मालूम है कि स्कूलों में, ख़ासतौर पे कॉन्वेंट में उर्दू का नहीं होता, लेकिन घर का माहौल भी था और मेरी ख्वाहिश भी थी, और कुछ मुसन्निफ़ीन को पढ़ने का शौक़ भी था, जैसे इब्ने सफ़ी। ये कहते हुए मैं शर्माऊंगी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने सफ़ी ने कि नॉवल होने जासूस नॉवल।

0: ने मुझे उर्दू के लिए जितना आमादा किया शायद
1: बिल्कुल।
0: किसी और ने ना किया हो।
1: इब्ने सफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो उसका इमरान तो अपनी तरफ खींचता ही खींचता
0: जी,
1: है,
0: इमरान
1: लेकिन
0: भी, फरीदी भी, हमीद भी, सभी उसकी
1: बिल्कुल, तो ये सारे किरदार जो हैं अपने आप में अभी भी लगता है कि हमारे आसपास ही वो किरदार हैं और हमारे आसपास ही ज़िंदगी जी रहे हैं।
0: खास
1: तो
0: तो अभी उनमें खास बात यह कि उन्होंने जो अपने दौर से मेरा ख्याल है 70 साल आगे के माहौल को लिखा, क्योंकि जो रोबोट वगैरह जो आज बन रहे हैं
1: जी,
0: उनका जिक्र आपको उनकी नॉवेलों में मिलेगा।
1: तो सबसे पहले आपने शेर कब कहा था?
0: शेर कहा था 4 साल की उम्र में।
1: 4 साल की उम्र में कौन सा शेर कहा था, क्या याद है अभी आपको?
0: जी वो मुझे याद है, वो के सुनाने का है नहीं, क्योंकि जाहिर है आप समझ सकते हैं कि 4 साल
1: की उम्र का शेर है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे।
0: हुआ ये कि मेरी जो मुझसे बड़ी वाली बहन थी उससे 14 साल बड़ी थी
1: जी।
0: तो जब थोड़ा होश संभाला तो जैसे मुसलमान घरानों में होता है कि कुरान से शुरुआत होती है
1: जी,
0: तो मेरी वालदा ने उन बड़ी बहन को ये जिम्मेदारी दी कि इसको सिपारा वगैरह पढ़ाना तुम करो
1: जी।
0: लेकिन उनका ये था कि उनकी अपनी मशगूलियात थी, अपनी दिलचस्पियाँ थी, उनकी अपनी तालीम थी, या फिर वो भी नावलों वगैरह की शौकीन थी। तो जब भी मैं सिपारा लेके जाती तो वो कहती नहीं अब नहीं, अभी नहीं, बाद में पढ़ाएंगे। तो कई दिन बाद मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि लाओ सिपारा, लाओ मुझे सुनाओ तुमने क्या सीखा
1: जी।
0: जब मैं लेके गई तो पता चला कि कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं था।
0: तो उन्होंने थोड़ा सा खशमगी निगाहों से देखे, कहा ये क्या? मैंने फिलबदी कहा कि मैं आपा कहती थी अपनी बड़ी बहन को, आपा मुझे पढ़ाती नहीं, पढ़ना मुझे आता नहीं, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, पढ़ना मुझे आएगा नहीं।
1: मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, पढ़ना मुझे आएगा नहीं, क्या बात है।
0: तो एक तरह से तो मेरी वालदा ने कहा कि जरासीम अभी से मौजूद है।
1: जरासीम अभी से मौजूद है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अलीगढ़ में जब आप थी तो पढ़ने के दौरान जो है आपको बहुत से एजाजात मिले हैं, जिसमें से मैं अभी एक तस्वीर देख रहा था जो हमारी वज़ीर आज़म आजहानी इंदिरा गांधी के साथ थी, तो उसके बारे में बताएंगी कुछ?
0: ये 1975 का ज़माना था कि जब पहली दफ़ा यौम ख़वातीन मनाया जाना तय हुआ
1: जी,
0: और उस साल अखबारों में इश्तहार निकला कि मज़मून निगारी का मुकाबला होगा उर्दू अंग्रेज़ी हिंदी तीनों में और पूरे हिंदुस्तान में, और उसका मौजू होगा कि हिंदुस्तान की आइंदा 10 साल तरक्की में ख्वातीन का क्या रोल होगा
1: जी।
0: तो उस वक्त मैं कुछ 17 साल की थी, ये 19 साल तक की उम्र के त्यार के लिए था। तो मैंने उसमें मजमून लिखा, फिर उस जमाने में खलील रहमान आजमी साहब हेड थे, थोड़े दिन के लिए हो गए थे, तो उनसे जाके वो अटेस्ट करवाना था, फिर मैंने भेज दिया था, और भेजने के बाद भूल गई। लेकिन फिर 76 की शायद मार्च में गालिबन इनके पास मेरे पास खत आया कि मुझे पहला इनाम मिल गया।
1: अरे बहुत मुबारक हो, दोबारा से बहुत बहुत मुबारक हो।
0: तो फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया
1: जी।
0: और ये जो तस्वीर आपने देखी है ये इंदिरा गांधी की क़यामगाह की थी जहाँ उन्होंने हम लोगों को बुलाया था।
1: पहला अफसाना 14 साल की उम्र में रिसाला खातून मशरिक में शाया हुआ, अगर मैं सही हूँ तो
0: जी, बिल्कुल।
1: उसके बाद आपने आपके अफसाने नावल और अफसांचे हिंदू पाक के रसाले जरायद में मुसलसल शाये होते रहे हैं। आपने अफसाना नावल अदब अतफाल तनकीद व तहकीक मजहबियात और फरहंग नवेसी में बेशबहा काम किया है आपने, और मुझे जहाँ तक याद है कि आप का पी एच डी का मकाला भी फरहंग पे ही है
0: जी,
1: उसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
0: जी, नज़ीर अकबर आबादी की फरहंग पे है
1: जी,
0: और ये मौजू मुझे खुर्शीदुल्लाम साहब ने दिया था, और वो इसलिए दिया था क्योंकि मेरा ताल्लुक आगरे से है
1: जी,
0: और दूसरे मेरे ताया साहब जो थे मैकश अकबर आबादी, उनको लुगात नज़ीर का महरम कहा जाता है।
1: क्या बात है।
0: तो उनका ये ख्याल था कि वैसे तो मैकश साहब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इनके जरिए शायद निकलवाया जा सकता है
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए मिला मुझे, और क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत जल्दी शादी हो गई, बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 12 साल बाद जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, उसके बाद जब मैंने दोबारा जामिया से जब रजिस्ट्रेशन करवाया तो उस वक्त तक इस मौजू पे किसी ने काम नहीं किया था
1: जी,
0: तो मुझे खुशकिस्मती से वो मौजू दोबारा मिल गया।
1: क्या बात है। आपके जो अफसाने हैं उनके 5 मजमूए शाये हो चुके हैं, 6ठा मजमूआ आपके बस शायद ज़ेर इशात है।
0: नहीं, अब तो वो शाया हो गया।
1: हो गई है वो। तो बच्चों की कहानियों का एक मजमूआ भी जल्द मंजर आम पर आने वाला था आपका, शायद आ गया है। एक जखीम तहजीबी फरहंग हाल ही में आपकी शाया हुई है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा
0: अगर आपके पास वक्त हो, मैं थोड़ा सा तफसील में जाऊं।
1: बिल्कुल।
0: मैंने जैसे कि आपने खुद भी कहा कि मैंने कोचिंग सेंटर अपने घर पे ही चलाया
1: जी,
0: और उसमें स्कूली बच्चों को भी मैं पढ़ाती थी, लेकिन असली मेरा جو کہنا چاہیے کہ ایک مقصد یا کہ جو ایک گول تھا وہ یہ تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ ذاکر نگر میں رہتی تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم

0: की तरफ वहाँ पे लोगों को तवज्जो नहीं थी आम तौर पे,
1: जी
0: क्योंकि लोगों को जैसे कि ख्याल है उनको ये होता है कि भाई इसको पढ़ा के क्या करना है, इसे तो शादी होके जाना है और यहाँ भी रोटी पका रही है। बल्कि हमारी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि जी ये कुछ पढ़ लेगी तो क्या रोटी गोल हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: तो ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आप समझ सकते हैं कि उनका माइंड सेट या उनका मतलब जहनी
1: कैसा था,
0: क्या
1: बिल्कुल,
0: कैसा
1: बिल्कुल।
0: था। तो इसके लिए मैंने फिर घर घर जाके उनको माओं को वालदाओं को उनको राज़ी किया कि वो मेरे पास भेजें और मैं प्राइवेट इम्तहान दिलवा दूंगी। तो मैं जामिया से फॉर्म भरवा देती हूँ उनका, टेंथ से होता है जामिया में
1: जी।
0: उससे पहले वो खैर स्कूल नहीं, मैं उनकी 7वीं 8वीं तक की तो वो पढ़ी लेती थी,
1: पढ़ी लेती थी।
0: उसके बाद मैं टेंथ उनको करवाती थी, फिर एक साल छोड़ के 12th, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 35 साल में मेरा ख्याल है मैंने हज़ारों लड़कियों को इस काबिल किया कि आज मन में से बहुत सी ऐसी हैं कि जो साहिब रोज़गार हैं और अपना हेल्प कर रही हैं।
1: क्या बात।
0: लेकिन इससे एक महसूस ये हुआ कि इसके बावजूद
1: जी
0: उर्दू से किसी को दिलचस्पी नहीं। जो लड़कियां बहुत सी पहले अपना स्कूलिंग बिहार या उत्तर प्रदेश से करके आई होती हैं उनका तो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का होता है
1: जी,
0: और अंग्रेज़ी वैसे ही उनकी बहुत कमज़ोर होती है। तो खैर लेकिन अंग्रेज़ी से मेरा कोई ये मेरा कोई जज्बा नहीं था, सच्ची बात बताती हूँ आपको
1: जी।
0: लेकिन उर्दू से मेरे जज्बाती जो लगाव था, मैं चाहती थी कि मैं अपनी ज़बान, तो मैंने उनको फिर पढ़ाना शुरू किया
1: जी।
0: जामिया में फर्स्ट ईयर में, बीए के फर्स्ट ईयर में एक एलिमेंट्री उर्दू का पर्चा होता है,
1: बिल्कुल,
0: और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें उस पर्चे में ये होता है कि वो अल्फाज जोड़ के लिखना, अलग करके लिखना, पांच फलों के नाम, पांच फूलों के नाम, लड़कियां उसमें फेल हो जाती थी। तो इसलिए मैंने उर्दू पे उस सबक से हटके, निसाब से हटके एक क्लब कायम किया जिसका नाम था परवास, और हम शनिचर इतवार को, क्योंकि मैं पढ़ाती नहीं थी तो उसमें उनको बुलाती थी और उनको उर्दू की तरफ रागिब करती थी, उन्हें सुनाती थी कुछ कहानियाँ वगैरह और उनसे कहती थी कि तुम भी लिखो।
1: बिल्कुल।
0: और धीरे धीरे ये हुआ कि वाकई वो लिखने लगी, वो शायरी भी करने लगी। लेकिन इससे मुझे बहुत सी, एक तो यह कि बहुत सी तहजीबों का पता चला कि जिससे, क्योंकि हमने अपनी एक ख़ास तहजीब जी थी।
1: जी जी।
0: मैं बिल्कुल सदाकत से कहूँ कि सर जो कुछ असर डाला वो उसी ने डाला,
1: उसी ने डाला।
0: वो माहौल ये था कि आज के ज़माने में उसकी उसकी मतलब तसव्वुर भी मुहाल होगा
1: जी,
0: कि हमारे जो खेल हुआ करते थे वो बड़े अदबी होते थे, कि हम सब लोग जब छुट्टियों में जब सब खानदान जमा होता था तो तमसीली मुशायरे हो रहे हैं
1: जी,
0: बैतबाजी की महफिलें सज रही हैं, तालीमी ताश खेले जा रहे हैं। तो हमारी ये दिलचस्पियाँ ये थी, मोबाइल नहीं था,
1: जाहिर सी बात है,
0: टीवी तो था, टीवी नहीं था, मोबाइल का तो दूरी चलिए बात ही बात की है।
1: तालीमी ताश जो है एक अपने आप में
0: बहुत बड़ी उस मतलब आपका जो जिसे कि हम लफ्जियात कहते हैं या वोकैबुलरी जो कहते हैं
1: उससे,
0: वो उससे इतना ज्यादा मतलब डेवलप होती है कि हमें नए नए लफ्ज बताने आते हैं, दिमाग में जोर लगाना पड़ता था कि इससे क्या बन सकता है,
1: बिल्कुल
0: इन लफ्जों की उलट फेर से क्या नया लफ्ज बन सकता है। तो ये दिलचस्पियां थीं, तो वो उसी का असर है
1: जी। आपने नसर और नज्म दोनों में अपनी शिनाख्त कायम की है, तो हमारे सामईन को आप ये बताएं कि अदब किस तरह समाज की तश्कील करता है, शायरी किस तरह दिलों को जोड़ती है, और एक अदीबा के तौर पर उनका तख्लीकी सफ़र किन तजुर्बात और मुशाहदात से इबारत है।
0: देखिए अदब तो बहुत सबसे ज़्यादा जो अदब की खसूसियत है वो जोड़ने की है, क्योंकि जो भी कुछ लोग पढ़ते हैं तो वो अपने बारे में नहीं पढ़ते और लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इस तरह वो समाज से जुड़ते हैं
1: बिल्कुल,
0: और उनको ये पता चलता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है। मतलब कुएं का मेंढक जो एक घर में है शख्स, वो उस वक्त तक उससे वाकिफ नहीं होगा, या तो वो खुद निकल के मतलब इस ऐसे प्रोफेशन में हो कि जहाँ वो घूम घूम के जैसे सहाफ़ी हैं
1: जी,
0: इसमें चखता है को लीजिए, आप उनके अफसाने पढ़ेंगे तो आपको एक खास माहौल का पता चलेगा जो आपको आज नहीं मिलेगा। जैसे चौथी का जोड़ा जो उनका सबसे ज्यादा मशहूर नॉवेल है, उसकी पहली लाइन पढ़िए कि सैदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी,
1: जाजम बिछी थी।
0: अब इसमें सैदरी, चौका, जाजम, ये तीन ऐसे लफ्ज हैं जिससे आज के लोग वाकिफ नहीं। तो ये अदब ही है कि जो हमें ये बताता है
1: जी
0: कि हमारी तहजीब क्या थी, किस तरह से रहन सहन था, फिर मसाइल जो उसमें, मैं एक ही अफसाने को फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप चौथी के जोड़े की बात ही लें, तो वो जो था कि गरीब बेवा औरत जिसके दो जवान लड़कियां हैं और रिश्ता नहीं मिलता, और रिश्ता ना मिलने की दो वजूहत हैं, एक वजूहत वजह तो यह है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहेज दे सके और अच्छा बर अपने बेटियों को दे सके, दूसरी वजह यह भी है کہ وہ اسی زمانے میں ہار

品牌进行计算。听众朋友们刚才播送了一篇短评，现在播送印度歌曲，请收听。

0: देख जरा देख देख हम सब हैं जितने भूत प्रेत तुझे गेंद के जैसा फेंक फेंक हम तुमको भी भूतनी बना डालेंगे।
1: अनुकूल हक ने हा हा हा हा हा हा। आज रात हाँ आज

0: क्या कहा?
1: ठीक कहा।
0: ठीक कहा?
1: हाँ हाँ ठीक कहा।
0: चुप मोटे।
1: बको मत।
0: उफ,
1: यू

0: छाया।
1: हाँ जी।
0: पास बैठूं?
1: ना जी।
0: अरे मान जाओ ना।
1: नहीं।
0: अरे अरे कहाँ चली, जरा ठहरो ना।
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर चली जा मोटी।
1: पागल, तुम सुधरोगे नहीं। क्या करते हो बेशरम,

0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

0: from every corner of our sport that praise belongs to people.
1: बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इस काम को ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
1: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नरोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
3: आई थिंक इट्स डेफिनेटली ह्यूज फॉर फ्रेंड्स, डेफिनेटली ह्यूज, फेल्ट ऑल द सपोर्ट अबाउट द फैंस, वी आल्सो गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्टाफ बिहाइंड, एंड आई थिंक डेफिनेटली टुडे वाज अ डे फॉर फ्रेंच बैडमिंटन एंड इट वाज अ डे for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
1: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
4: देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इज सपोर्टिंग मी, आई वांट टू थैंक ऑल द माय फैंस सपोर्टिंग मी, दिस कीप्स मी गोइंग एंड जस्ट गिव मी एनर्जी, सो आई एम सो एक्साइटेड एंड वेरी एंजॉय, आई थिंक इट्स सपोर्ट मी, yeah, cheering on me. This is my motivation, and I dare a lot of people, my team coach, head coach, my family, or fans, trainer, or supporting me. This is my keep going.
1: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
5: And now, our men's doubles world champion 2026. From China, Liang Weiqing and Wong Cheng.
1: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात दी और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
6: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd, that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
1: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेलरू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
7: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
1: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
8: I'm very, very happy, of course.

0: and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
1: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर. शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी. विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया. इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ. 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ दो देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत. इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती है,
2: There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjuna Award this week when they announced, I feel like that also gave us some other boost in this tournament.
1: इसी श्रेणी में अपना पहला World Championships खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यू कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया. राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली.
3: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो, लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर.
1: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए.
4: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर वन इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल. आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ.
1: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली.
4: Definitely a lot to learn, especially this match, a tough one to digest as well, but we'll go back, analyze and I think a lot of positives as well from this tournament, but I think definitely a lot to learn and a long way to go.
1: Dusri taraf, Lakshy Sen, round of 32 mein USA ke Garrett Tan se haare, jiski umeed shayad kisi ne nahi ki thi. वुमेन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी.
5: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से. बहुत अच्छा चल रहा था गेम वन, गेम टू और गेम थ्री भी बहुत इक्वल चल रहा था. लास्ट थ्री पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट. आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंस.
1: मेंस डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा खरुनन की जोड़ी राउंड ऑफ 32 के आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे. वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी.
6: We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game, a lot of the points. हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज.
1: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े एवं आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया. कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले. और बताते हैं पुलेला गोपीचंद.
7: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं. विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं और मेन सिंगल्स में भी

होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: तो भैया अभी आप भूपेंद्र सिंह को सुन रहे थे और ये जो बता रहे थे योग की बात कर रहे थे, और योग की बात जोड़ना भी होता है वीरेंद्र भाई।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, योग माने जोड़ना, बचत करना, और बचत हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
0: बहुत
1: कई
0: जरूरी
1: बार
0: है।
1: ऐसा समय आ जाता है कुछ सुन बहन कि हम मतलब पैसा ढूंढ रहे होते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता,
0: बिल्कुल।
1: तब क्या होगा?
0: तब यहाँ पे एक बात आती है कि हमें जो जो हमारी पाई पाई कहते हैं ना, कि शुरू से हमारे यहाँ संस्कृति रही है पाई पाई जोड़ने वाली संस्कृति।
1: जी
0: छोटी
1: जी
0: छोटी जो हम एक गुल्लक जो परंपरा थी, आपको याद होगा, आपने भी बचपन में गुल्लक रखी होगी, और कितने
1: जी
0: खुश होके बचपन में हम गुल्लक में पैसे जोड़ते थे,
1: जी
0: एक एक रुपये। अब तो बहुत 50 पैसे होते थे, और भी कई छोटे छोटे
1: दसी पंजी जितनी भी
0: पंजी
1: होती
0: सारी
1: थी वो सब हम उसमें
0: हम
1: जोड़ के
0: जोड़ते
1: और
0: थे।
1: उसे बजा बजा के देखते थे कि कितनी भारी हो गई, कितनी
0: और
1: हमने बचत
0: जब
1: कर ली।
0: भर जाता था तो जब हम उसको निकालते थे तो जो खुशी होती थी वो बहुत ही अनमोल थी। और
1: जी
0: यही जो जोड़ने की जो कला है, पाई पाई जोड़ने की कला, हमारी ये जो पुरानी संस्कृति, ग्रामीण
1: जी
0: संस्कृति में, जो संस्कृति में है, वो हमें आगे बढ़ाती है।
1: जी
0: हमारे जो कहते हैं ना कि वित्तीय हमें
1: पोषण
0: मनोबल
1: देती
0: देती
1: है
0: है,
1: और
0: हमें आगे स्ट्रांग बनाती है, हमें
1: जी
0: शक्तिशाली बनाती है।
1: जी कुसुम बहन कहते हैं ना कि आज की बचत और कल की मदद। अब ये देखो आपके हमारी कहावतें भी ऐसी हैं कि माँ फिरे चोती चोती, बेटा बिटोरा ही बख्श रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सबको संयम से ही अपने धैर्य के साथ जो जोड़ी गई रकम
0: बिल्कुल।
1: है, जो भी पूंजी जोड़ी है, उसको संयम से ही इस्तेमाल भी करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए कुसुम बहन पता है हम क्या कर सकते हैं कि बचत करने के लिए बैंक में बचत खाता भी खोल
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं।
0: बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बचत खाता खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फिक्स डिपॉजिट में आप बहुत ज़्यादा तादाद में आप पूंजी लगाएं। छोटी छोटी जितनी भी आपको मिलती हैं, आपके घर में जितनी कमाई होती है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के अगर हम बचत कर लेते हैं, तो वही बचत पाई पाई जो हम जोड़ते हैं, वो आगे बढ़ के बड़ी एक राशि बन जाती है।
1: जी बूंद बूंद से घड़ा भर
0: घड़ा
1: जाता है
0: भरता
1: ना,
0: है, बिल्कुल
1: तो ऐसी यही बात है। और समझदार को इशारा ही
0: इशारे
1: काफी होता
0: काफी
1: है कि
0: होता है।
1: बचत करो और बचे रहो।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और देखिए, पैसों को जब हम सोच समझ कर खर्च करते हैं, भविष्य के लिए धन बचाते हैं, तो कर्ज के जाल से हम बचते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि हमने बचत करी नहीं और हमें अचानक से आवश्यकता पड़ गई
1: जी
0: पैसों
1: कई
0: की,
1: बार होता है।
0: तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप किसी से मांगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कर्ज
1: नखरे
0: के
1: भी
0: में
1: दिखाते
0: नखरे भी
1: हैं और
0: दिखाते
1: नुकसान
0: हैं,
1: भी होता है,
0: नुकसान
1: मांगन
0: भी होता
1: मरण
0: है।
1: समान कुसुम बहन।
0: बिल्कुल।
1: तो मांगना अच्छा भी नहीं लगता है,
0: तो ये
1: लेकिन
0: गिरवी रखने की परंपरा जो पहले चलती थी, तो कितना वो उसके के अंदर उस चक्की में फंस जाते थे। तो ये जो बचत की परंपरा है ना, अगर हम बनाएंगे तो हम अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे, तो यहाँ उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है वीरेंद्र भाई।
1: जी तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ सुनवा दें अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल।
1: जयवीर
0: नेकी,
1: भाटी, जी हाँ
0: नेकी और पूछ पूछ, तो आइए सुनते हैं
1: जयवीर
0: जयवीर भाटी
1: भाटी को।
0: को।

0: तो वीरेंद्र भाई, अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे जयवीर भाटी से रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में

0: एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: वीरेंद्र भाई, देखिए हम बात करते हैं इसमें किसानों की, उनसे जुड़े हुए चीज़ों की। तो खेती बाड़ी करने के लिए हमें, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बीज की, और बीज भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए
1: जी। और बीज से ही जो उत्पादन निर्धारित होता है, अच्छा बीज होगा तो अच्छा उत्पादन होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होगा, और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की कीमत भी अच्छी मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिरेन भाई, जैसे इमारत की नींव बढ़िया होती है ना, तो उसी तरह जो हमारी जो फसल होती है किसान भाई बहनों की, अगर उसकी भी नींव मजबूत होगी, यानी
1: बीज वाली
0: बीज की,
1: नींव,
0: हाँ बीज की क्वालिटी बढ़िया होगी, तभी तो फसल लहलहाएगी।
1: जी, तो इस विषय से जुड़ी हुई एक योजना है हमारे भाइयों, हम आपको बता दें, बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन, बहुत ही खास मिशन है, और इसके तहत किसानों को रियायती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं ना कुसुम बहन, वो मतलब वो दिए जाते हैं और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं इसके तहत, और कृषोन्नति योजना कहते हैं इसे। कृषोन्नति योजना बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है
0: भाई, भारत सरकार की ये कृषोन्नति योजना के तहत चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, ताकि फसल का उत्पादन और पैदावार बढ़ सके। वीरेंद्र भाई
1: जी, और बीज ग्राम कार्यक्रम भी इसके तहत चलाया जाता है, जिसमें कुसुम बहन अनाज फसलों के लिए बीजों पर 50% और दलहन तिलहन व चारा फसलों के लिए 60% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
0: इस योजना के बहुत सारे घटक है। ये मिशन केवल बीज बांटने तक सीमित नहीं है वीरेंद्र भाई, बल्कि इसके कई हिस्से हैं, जैसे कि बीज ग्राम योजना। इसके तहत गांव में किसानों को खुद के इस्तेमाल के लिए और दूसरों को देने के लिए उन्नत बीज तैयार करने की ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रमाणन प्रणाली को मजबूत करना, यानी बीजों की गुणवत्ता जांचने के लिए नई लैब बनाना और पुरानी लैब को आधुनिक मशीनों से लैस करना भी होता है।
1: जी,
0: और बीज बैंक भी एक एक प्रमुख घटक है। किसी आपदा जैसे सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति जब पैदा हो जाती है वीरेंद्र भाई, तो उस समय बीजों की कमी ना हो, इसके लिए आपातकालीन बीज स्टॉक तैयार रखा जाता है।
1: जी, तो इतनी सारी इस कार्यक्रम की खूबियां हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम अच्छी फसल ले सकें। तो किसान बहन भाइयों के लिए इस ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: और अब आगे बढ़ें थोड़ा सा, अपने किसान बहन भाइयों का योगेंद्र निमचाना से मनोरंजन करा दें।
0: बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं योगेंद्र निमचाना को।
2: दया

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, कलाकार थे योगेंद्र निमचाना। और कुसुम बहन, इसके बोल कितने प्यारे थे ना, कर्म नाम करने का होवे तो सभी अपना कर्म करें तो कितना अच्छा हो।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: कर्म अगर हम करेंगे, कर्म का ही फल होता है, जो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और कर्म करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी, ये हमारे जीवन का आधार है। जितने भी जीव जंतु हैं वो भी अपना कर्म करते हैं तभी वो अपना जीवन यापित कर पाते हैं। और हमारी सरकार भी अच्छा काम कर रही है। और अब आपको बता दें कि 22 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के सभागार में एग्री स्टैग डिजिटल कृषि मिशन व दलहन मिशन के आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित सेमिनार में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनवाते हैं।
2: भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा की है। एक तो एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन लगभग 14 करोड़ के आसपास बननी है। तो सभी राज्य उसमें तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और कुछ को और तेजी लाने की आवश्यकता है। फार्मर आईडी के साथ साथ फार्मर से जुड़ी सारी संपत्तियों का ब्यौरा होता है, जिनमें जमीन भी होती है। तो कुछ राज्यों में लैंड पार्सल का काम कम हुआ है, तो उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की है। विवरण पूरा हो, गांव के नक्शे भी लगभग 5 लाख गांव के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 5 लाख से थोड़े ज़्यादा ही। और कई जगह डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम भी कई राज्यों ने प्रारंभ कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र में 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया लाखों किसानों को बांटने में सफलता प्राप्त की। तो फसलों की खरीद के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर काम किया, कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य सैचुरेट करना, मतलब इस काम को 100% पूरा करना। तो आज अलग अलग राज्यों ने समय सीमा बताई है कि हम 3 महीने में, हम 2 महीने में। जहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं कि वहाँ कम्युनिटी लैंड जैसे कॉन्सेप्ट है, तो वो SOP बना रहे हैं। दूसरा, दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। अभी दालें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले वर्ष में ही हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में सफलता प्राप्त करना प्रारंभ किया है। हमको एक तो दलहन का क्षेत्र बढ़ाना है, राइस फैलो इलाका जहाँ चावल पैदा होता है वहाँ धान के बाद भी दाल लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भी एरिया बढ़ाना है, एक क्षेत्रफल बढ़ाना है, दूसरे उत्पादन बढ़ाना है, और तीसरे उत्पादकता बढ़ानी है। तो तीनों में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बार भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मतलब अलनीनो के प्रभाव के बावजूद भी, पिछले साल से 1% से ज़्यादा इलाके में दलहन की खेती हुई है, और उस क्षेत्र में भी हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं। राज्यों ने उसकी भी समीक्षा की है। और रवि के सीजन में, और क्योंकि दलहन की मुख्य खेती हमारे रवि के सीजन में होती है खरीफ से ज़्यादा, क्योंकि चना हो, मसूर हो, बाकी दालें

0: ये हमारी रबी की फसल में पैदा होती है, उसके लक्ष्य भी तय किए।
1: अभी आप सुन रहे थे 22 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में के सभागार में एग्रीस टैग डिजिटल कृषि मिशन व दलहन मिशन में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में केंद्रीय कृषि व विकास कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को।
2: और साथियों, यूं ही ये सफ़र किसानों का, देश का और विश्व का चलता रहेगा। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। कुसुम बहन कहते हैं कि हम सभी एक डोरी से बंधे हुए हैं, बस वो डोरी नज़र नहीं आती है और किसान उस डोरी का सिरा है। वहीं से शुरू और वहीं पे ख़त्म ये कहानी होती है, कभी फसल तो कभी पानी होती है। जी,
1: और कहते ना कि जिंदगानी भी बहुत ऐसी है कि थोड़ी सी जिंदगानी इस जगत में मुसाफिर खाना है और हमें यूं आगे बढ़ते जाना है, तो क्यों ना कुछ इससे जिंदगी से जुड़ी ही बातें जो हम बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वो है वीरेंद्र भाई
2: जी,
1: किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं, किसान भाई बहनों के साथ, क्योंकि जब वो फसल पैदा करते हैं तो ही हमारा भोजन होता है
2: जी।
1: तो एक तरह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और आइए कुछ इसी तरह की बात सुनते हैं सोमपाल सिंह से, जिंदगी जगत मुसाफिर खाना।
2: जी,

0: गहरी बात थी सोमपाल सिंह की गाई इस प्यारी सी उपदेश की, दिल को छू लेने वाली बातें हैं हमारे जहन में अंदर तक उतर गईं।
1: बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात थी जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी जो हम जीते हैं वो बहुत ही, ये हम सिर्फ यहाँ पे रहने आए हैं और हमारे जो कर्म हैं वो ही आगे जाएंगे, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे अच्छे काम करें अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने किसान भाई बहनों के लिए, और हम सब मिलकर एक अच्छे जीवन की शुरुआत करें, नींव रखें ताकि हमारे से बाकी लोग भी खुशहाल बने।
0: जी, और कुसुम बहन, अब हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर हमारे किसान बहन भाइयों को बहुत सारी ऐसी काम की बातें बताते रहते हैं जो
1: बिल्कुल
0: उनके कृषि कार्यों और उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो इसी के तहत बताया गया है कि ये समय मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की जो पौधशाला है उसके बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सभी किसान बहन भाई जो भी ये बुआई करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर लें, और जिन किसानों की मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की पौध तैयार है वे मौसम को ध्यान में रखते हुए उनकी रोपाई की तैयारी भी कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं। और साथ ही इसमें आगे वैज्ञानिक कहते हैं कि फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीटों, रोग मुक्त हो सकें, और वो खड्डे और खरपतवार से भी उनको अलग किया जा सकता है, यानी खरपतवार जो उनमें हो उनको हटा देना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई, और इसके अलावा भी हम आपको बता दें कल आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनेंगे। कल आप सुनेंगे बातचीत, मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन पर आँखों का पर क्या प्रभाव पड़ता है, डॉक्टर रोहित कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ ESI नई दिल्ली से बातचीत होगी। साथ ही चर्चा होगी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के बारे में और योजना, जिस योजना के बारे में हम
0: मेक इन
1: बताएंगे।
0: इंडिया,
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल,
0: हाँ, भारत बन रहा है।

0: तन रहा है भारत,
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ रहा है
1: सुदृढ़ हो रहा है, आगे
0: जी
1: बढ़ता रहे, हम यही
0: जी
1: कामना करते हैं। और इसके अलावा कल कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी भी आप
0: जी
1: सुनेंगे, और
0: जी
1: आप हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं
0: फीडबैक
1: फीडबैक
0: fnh@gmail.com पर। और अब चलते चलते एक और प्रस्तुति एक फौजी की आवाज़ में, बहुत ही ज़रूरी है तो सुनवाते हैं आपको।

0: तो आप सभी श्रीफाल फौजी द्वारा गाया ये उपदेश सुन रहे थे, और इसी के साथ हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम
1: राम राम।
0: राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारसर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों में जमीनी स्तर पर तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने परिषद क्षेत्र में समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 गिरफ्तार किए। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन के मद्देनजर परिवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, गुरुग्राम प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली अग्निशमन विभाग के बीच आपसी समन्वय के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने सरकार का समग्र दृष्टिकोण के नजरिए से काम करने पर बल दिया, जिसमें सभी एजेंसियां अलग अलग काम करने की बजाय आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें, खासकर उन मामलों में जहां तेजी से और मिलकर काम करने की जरूरत हो। उपराज्यपाल ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों को तय समय सीमा में पूरा करने, जवाबदेही तय करने और जमीनी स्तर पर तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने राष्ट्रीय राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर परिषद क्षेत्र में व्यापक तथा समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस तैयारी योजना का उद्देश्य शिखर सम्मेलन की पूरी अवधि के दौरान प्रभावी योजना, समन्वित क्रियान्वयन, निर्बाध नागरिक सेवाएं तथा शहरी प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस योजना के अंतर्गत सौंदर्यकरण के लिए 41 प्रमुख सड़कों को 14 सर्कलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सर्कल के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही परिषद द्वारा अगले महीने की 9 से 14 तारीख तक 2400 घंटे स्वच्छता और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अस्थायी कूड़ेदान और मोबाइल शौचालय लगाए जाएंगे और आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई भी स्वच्छता योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। परिषद बुनियादी ढांचे के रखरखाव को प्राथमिकता देते हुए सड़कों के गड्ढे और फुटपाथों की मरम्मत, मलबा हटाने और उचित वर्षा जल निकासी व्यवस्था सहित स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता सुनिश्चित करेगी। इस दौरान चिकित्सा संबंधी, मच्छर नियंत्रण और अन्य निवारक जन स्वास्थ्य उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सम्मेलन अगले महीने की 12 और 13 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
5: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन चलने वाला यह सम्मेलन हाइब्रिड माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में

0: आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया, अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में एक फर्जी एयरलाइन जॉब दिलाने वाली गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी एयरवेज में नौकरी पाने को इच्छुक लोगों को लुभाने के लिए नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का संबंध अन्य 10 साइबर शिकायतों से था। वहीं एक अन्य साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
1: कंप्लेंट आने के बाद हमने चीटिंग में केस दर्ज किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया और इम्पर्सोनेशन, क्योंकि इनके जो कॉलर्स थे वो अलग अलग नाम लेके बात करते थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने करी और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ट्रेल करते हुए हमारी टीम नोएडा तक पहुंची, जहां पे फेक इनका सेटअप था, जहां से टेलीकॉलर्स कॉल करते थे और इन्होंने एविएशन जो अपनी अकेडमी बना रखी, जहां कोई इनके पास सेटअप नहीं था मैनेजमेंट एजुकेशन देने का, लेकिन इन्होंने ऐसी फेक बना रखा था।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलोग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद की है। मामले में आगे की जांच कर मादक पदार्थों के तस्करी के पूरे गिरोह का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज बारापुला एलिवेटेड रोड में जारी विस्तार कार्य के चलते यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार NH9 से सराय कालेखाएं की ओर जाने वाले मार्ग में यातायात में भारी जाम लगने की संभावना है। यातायात पुलिस ने लोगों से यात्रा की योजना पूर्व ही बनाने, यातायात नियमों का पालन करने और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नत योजना से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने का आग्रह किया।
2: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOUs साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: इसी बीच दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्षाबंधन सहित आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी में परिवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित, साफ सुथरा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा पिछले 2 दिनों में दिल्ली में 22 सैंपल लिए गए और उन्हें विस्तृत जांच के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभाग ने लगभग 508 किलोग्राम नकली पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आवारा पशुओं और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम पर हुई सार्थक चर्चा हुई। श्री वाही ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम तथा आवारा पशुओं की समस्या पर आगामी दिनों में एक विशेष सदन की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर दिल्ली के नागरिकों से जुड़े हुए हैं और इनका प्रभावी समाधान दिल्ली नगर निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली के उपमहापौर डॉक्टर मेनिका पंत ने आज ओल्ड दिल्ली जोन में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के अतिक्रमण पर नियंत्रण तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुधार

उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उपमहापौर ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से आज दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान बवाना से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने अपने क्षेत्र से संबंधित सहायक जल निकासी नाले के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर और कंझावला से मंगोलपुरी तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 2047 के मास्टर प्लान के अंतर्गत दिल्ली में 3000 वर्ग मीटर से बड़े प्लान किए गए प्लॉट पर घर दोबारा बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे लोग जर्जर इमारतों की जगह नए घर बना सकेंगे। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस प्लान में अनधिकृत कॉलोनियों में 2000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े इलाकों में भी दोबारा निर्माण का प्रावधान शामिल है। साथ ही किफायती आवास उपलब्ध कराने और दिल्ली में प्रदूषण तथा यातायात को नियंत्रित करने में मदद के लिए पारगमन उन्मुख विकास के माध्यम से भी उपाय लागू किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए 98वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों और स्कूलों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग को प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विभाग की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली में उड़ानों के संचालन पर भी असर पड़ा, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों में रुकावट आई और कई उड़ानों में विलंबन हुआ, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे से 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया और इनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थी। वहीं गुरुग्राम प्रशासन ने परामर्श जारी कर कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने और स्कूलों से ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा है। इसी बीच विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन पात्र हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों में जमीनी स्तर पर तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने परिषद क्षेत्र में समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 6 गिरफ्तार। राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय

0: सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे हम सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ फिल्मी संगीत। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म आशिकी से। स्वर दिया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। लीजिए, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम में अपना अगला गीत, जो लिया है हमने फिल्म सनम बेवफा से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फरेब का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था अभिजीत ने। अलीजिए, आप सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग द फायर का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और लीजिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो नंबर वन से ये गीत, जिसे स्वर से सजाया था सोनू निगम और साथियों ने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम हैं राही प्यार के से ही गीत, जिसे आवाज़ें दी थी कुमार सानू और अलका याग्निक ने। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: पर ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना, तीसरा युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, चौथा

साथ ही अभी आपसे आपने सुनी फिल्म छुपा रुस्तम से, ये जिसे स्वर से सजाया था अलका याग्निक ने। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर। और लीजिए आप सुनते हैं समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के

0: उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
1: We have free trade agreements or preferential market access.
4: भारत को $70 trillion की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने

0: करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव

0: नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India.

तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने ज़मीन की बहाली और क़ैद साली के तई मज़ाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनव्वे और ख़ातिर ख़्वाह बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में लगातार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग में दोतरफा तिजारत, इक्तसादी ताउन और आने वाले आला सतही समिट्स पर तवज्जो मरकूज की गई। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी ईआरएस मयंक सिंह भी वफद में शामिल थे। मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलखसूस इक्तसादी ताउन, तिजारत और तवानाई के शोबे में भारत और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और वजीर आजम का जाती पैगाम जनाब पुतिन तक पहुंचाया। डॉक्टर जयशंकर ने बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग को मुस्बत करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई, फर्टिलाइजर और तवानाई न्यूक्लियाई ताउन समेत मुतअद्दिद शोबों में नुमायां तौर पर मजबूत हुए हैं। वजीर खारजा ने जनाब पुतिन से कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की बिश्केक में चोटी कॉन्फ्रेंस के शिरकत के मुंतजिर हैं और वो भारत में ब्रिक्स समिट में जनाब पुतिन का इस्तकबाल करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं के जरिए बाहमी तौर पर किसी मौजूं तारीख पर अपनी सालाना समिट मुनक़द करने की तवक्को है। मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए रूस के सदर जनाब पुतिन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की और कहा कि रूस भारतीय किसानों और मुल्क के ज़रई शोबे में ताउन करने के लिए इकदाम कर रहा है। उन्होंने इस साल भारत और रूस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ्त को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक हकीकी तौर पर सभी शोबों में ताउन कर रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा शराकत दारी की नौयत में वसत की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोज़ा दौरे पर कल मॉस्को पहुंचे। दौरे के दौरान जनाब जयशंकर का रूस के अपने हममनसब सरगेई लेवरोव के साथ इलाकाई और आलमी मामलात पर नज़रियात के तबादले के मकसद से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल चीन के दो रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। जनाब डोवाल भारत चीन सरहदी मुजाकरात पर कल चीन में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर में चीन के अपने हममनसब और वजीर खारजा वेंग यी से बातचीत करेंगे। आज मीडिया को खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के बारे में तफसीलात बताते हुए चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा कि जनाब डोवाल और जनाब वेंग सरहदी मामले समेत दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। 2020 गलवान वादी कशीदगी और मशरक़ी लद्दाख में लंबे अरसे तक फौजी तातुल के बाद भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में रखना पड़ा था, लेकिन दोनों मुल्कों ने उस वक्त से अब तक बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों को नसीहत की है कि वो तैनाती के अपने अपने मुल्कों में बुनियादी सतह पर मसरूफ़ अमल रहें और मुकामी बिरादरियों के साथ भारत के ताल्लुकात को वसअत दें। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के 2025 बैच के 50 IFS ऑफिसर ट्रेनीज से आज सेवा तीर्थ में बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वह रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को फ़रोग दें और लोगों के साथ अपनी मसरूफियात को बढ़ाएं। वजीर आजम ने भारत की तहजीबी क़ुव्वत को टेक्नोलॉजी, इख्तरा और मौसर बातचीत से मरबूत करते हुए भारत की आलमी मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भी ऑफिसर ट्रेनीज की हौसला अफजाई की। वजीर आजम ने ऑफिसर ट्रेनीज से कहा कि वह दुनिया के साथ भारत की इक्तसादी मसरूफियात में तामुली अनासिर के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज से दरख्वास्त की कि वह भारत की सकाफती, तहजीबी और जुग्राफियाई क़ुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को ज़्यादा पुरकशिश आलमी सियाहती मकाम बनाने के लिए काम करें। वजीर आजम ने दुनिया भर के नौजवान अफराद की भारत में दिलचस्पी जगाने के लिए भारत को जानिए क्विज़ को फ़रोग देने का भी मशवरा दिया। वजीर आजम ने इस तरह की पहल को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए मस्नूई ज़हानत AI और गेमिंग के इस्तेमाल की भी हौसला अफजाई की।
इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज ने अपनी तरबियत और भारत दर्शन के तजुर्बे

0: बात बयान किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को असातेजा के कौमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में असातेजा और तदरीसी अमले को कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। इन असातेजा में आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक के असातेजा शामिल होंगे। ये इनामात असातेजा और तदरीसी अमले को मौसर दरसो तदरीस, आउटरीच सरगर्मियों, तहकीक और जिदत तराजी और स्पॉन्सर्ड रिसर्च, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्रामों और कंसल्टेंसी टीचिंग जैसे शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर दिए जाते हैं। असातेजा के कौमी इनामात 2026 के लिए इस साल 26 मई से 20 जुलाई के दरमियान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन तर्ज पर दरख्वास्तें तलब की गई थीं। इनमें जन भागीदारी के हिस्से के तौर पर बजात खुद, इदारा जाति और साथी असातेजा की नामजदगी जैसे जुमरे शामिल रहे। भारत ने कैद साली के खिलाफ मजाहमत को मुस्तहकम करने और जमीन की बहाली में मदद के लिए मुतनव्वे खातिर खा काबिल पेशगोई और पायदार बैनुल अक्वामी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है। मंगोलिया के उलान बातार में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP17 के 17वें इजलास के दौरान वजारती मुकालमे से खिताब करते हुए माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने यह बात कही। वजारती मुकालमे का उनवान था, सेहतमंद ज़मीन और कहत साली के तई मज़ाहमत के लिए इख्तराई माशी मेकनिज़म। इस दौरान वजीर मौसूफ़ ने ज़मीन की बहाली और कहत साली के तई मज़ाहमत से मुतालिक भारत के इख्तराई और मुतनव्वे मालियाती निज़ाम को नुमाया किया। जनाब यादव ने ज़मीन की बहाली के लिए पायदार सरमायाकारी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन की बहाली सिर्फ अदा की गई कीमत नहीं है, बल्कि ये खुराक, पानी, हयातियाती तनव्व, गुजर बसर और तवील मुद्दती लचक में सरमायाकारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खित्ते आराजी का वीरान होना, ज़मीन की जरखेज़ी और मेयार में गिरावट और कहत साली जिस पैमाने पर हो रही है उससे निमटने के लिए फाइनेंस के ऐसे मुतनव्वे, काबिल पेशगोई और पायदार ज़राए की ज़रूरत है जो अवामी बजट से अलहदा हों और मजबूत पब्लिक प्राइवेट साझेदारी पर मबनी हों। अपने खिताब के अख्ताम में जनाब यादव ने मकसद के हसूल की राह में अपने तजुर्बात, इकदाम, इदारा जाती इंतजाम और हासिल शुदा मालूम साझा करने की भारत की अहद बस्तगी की तौसीक की। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कायम करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों की तशवीश के इजाले की खातिर अगले 2 महीने के दौरान मौजूदा जवाबित में तरमीम करने के नए जाब्ते मुतारिफ कराएगा। टोक्यो में एक प्रोग्राम के दौरान जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने दिन के आगाज में 2 बड़े कॉरपोरेशन से मुलाकात की, जिनमें से एक भारत में सेमीकंडक्टर से मुतालिक साजो सामान तैयार करने का मंसूबा बना रही है और दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों से मुतालिक शोबों में कारोबार करना चाहती है। जनाब गोयल ने जापान में 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदों के एक बड़े वक्त से मुलाकात की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के रिश्तों को मजीद फरोग दिया जा सके। अपने दौरे में टोक्यो, नागोया और ओसाका के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, स्टील, ऑटोमोबाइल, मालियाती खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप समेत अहम शोबों के नुमाइंदों से मुलाकात शामिल है। यकसा अदायगी निज़ाम UPI ने डिजिटल अदायगियों के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत की डिजिटल अदायगियों के इको निज़ाम में रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभरा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए UPI लेनदेन का हजम बढ़कर तकरीबन 13,000 गुना हो गया है। वजारत खजाना ने कहा कि सालाना लेन देन का तनासुब साल 2016-17 के 1.78 करोड़ लेन देन से बढ़कर साल 2025-26 में 24,162 करोड़ लेन देन से तजावज़ कर गया है। लेन देन की मालियत में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है जो इसी मुद्दत के दौरान 7,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपये हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मवासिलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब के दौरान नए डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप का आगाज़ किया। जनाब सिंधिया ने 10 रियासतों में वाक़ 14 डाक दफातर की 9 तामीरशुदा इमारतों का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान जनाब सिंधिया ने कहा कि तकरीबन 4 करोड़ सुकन्या समृद्धि खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपये की रकम जमा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाएं। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: इस दौरान मावासलात के वजीर ममलकत डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी ने

0: डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप के फवायद पर रोशनी डाली। भारतीय महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने शुमाल मशरकी भारत, बिहार, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और वस्ती महाराष्ट्र में भी बहुत शदीद बारिश की पेश गोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमा मौसमियात ने जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, हिमालय के तराई वाले मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में आज औसत से तेज बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर पानी भर जाने के सबब गाड़ियों की आमद रफ्त में रखना पड़ा और ट्रैफिक जाम के वाकयात दरपेश आए। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर गुरूग्राम के सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। पानी भरने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कॉरपोरेट और प्राइवेट दफातर को भी घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। तेज बारिश के सबब दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों में रखना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 2 बैन अलावी परवाजों समेत 14 परवाजों के रास्ते बदलने पड़े। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में कल भी औसत दर्जे की बारिश और बादल छाए रहने की पेशगोई की है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: इधर ओडिशा में शदीद मानसून की सूरतहाल के जेर असर मुसलसल बारिश के सबब कई जिलों में पानी भर गया है। पानी की सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरतहाल पैदा हो गई है। खासतौर पर जुनूबी और शुमाली ओडिशा में सूरतहाल तशवीशनाक है, जहां पानी की सतह बढ़ने और मिट्टी के तोदे खिसकने से आम जिंदगी मुतासर हुई है और कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ओडिशा के कोरापुट में पानी भर गया है, मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंद्रावती और भस्किल दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। नवरंगपुर के दरिया के किनारे वाले गांवों में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। केवंझर में कौमी शाहरा नंबर 520 पर बाराबंका घाट पर मिट्टी के तोदे खिसकने से सड़क राबता मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और सैलाब के खतरे का अलर्ट बरकरार रखा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ईरान ने खबरदार किया है कि आज रात ऐलान की जाने वाली मुमकिन पाबंदियों से खित्ते में अमन नहीं आएगा। साथ ही ईरान ने किसी भी इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब देने का इंतबाह दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान तौसी अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ सख्त रद्दअमल जाहिर करेगा, जिनमें वाशिंगटन के साथ तआवुन करने वाले ममालिक को निशाना बनाने वाले इकदाम भी शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी के सख्त नतायज भुगतने होंगे और कहा कि ईरान के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर मुजाकरात पर तातुल के हफ्तों बाद ईरान की जानिब से ये इंतबाह दिया गया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया से नौजवान नस्ल को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने बारिश से मुतासर मैच में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से ध्रुव जुरेल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वें भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खा बैन अलावी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: इंजो देलीस दुरुद सलाम बर शुमा शनंदगान अजीज बरनामी शामगाह मां दर सात नूह सिदीक़े हिंद बराए बा सात हफ्त सिदीक़े तेहरान इला सात यासदे हिंद बराए बा सात नूह तेहरान पश्चिमी गर्दार انہیں بخش فارسی بر مردی آکاشوانی برنامی شام گاہی خدرا روی امواج کوتا در ردیف 9620 کلو ہرتز بخش می کنات. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، برنامه ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

वही ना तरानी दीगर तेरी दुनिया से दूर, मोहम्मद रफ़ी व लता मंगेशकर दर फिल्म ज़बक मीखानंद।

0: में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता

0: विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। एम्स्टलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्ले ऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister, Wang Yi, scheduled today. Announcing the special representative talks at a meeting briefing yesterday, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Yan said, Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act or CAA and issue citizenship certificates to eligible applicants. Showing a gazette notification issued by the Union Home Ministry, Chief Minister Suvendu Adhikari told reporters at state headquarters yesterday that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. He said the remaining applications would be processed quickly and certificates would be handed over through the respective district magistrate. The government has lifted export restrictions on wheat flour and related products, opening the way for overseas shipments of

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। और दोस्तों आइए आप लेके चलते हैं आपको उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं उस दौर के गाने जो इतने सुहाने, इतने पुराने, इतने यादगार, जो शायद ऐसे गाने हैं जिन्हें हमने कभी सुना भी ना हो, या ऐसे गाने हैं जो जो हमारी रूह तक में उतर जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उनको सुना नहीं है इसलिए शायद पहली बार में हमें वो इतने दिल के करीब ना लगे, लेकिन जब हम उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही चले जाएं। तो ऐसा ही एक बहुत ही पुराना गाना जो हमने लिया है 1938 में आई फिल्म, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब की ये फिल्म है, और फिल्म का नाम है धरती माता। और इस फिल्म में अपनी आवाज़ दी है पंकज मलिक जी ने, KL सहगल जी ने और उमा देवी जी ने, जिन्हें हम टुन टुन के नाम से भी जानते हैं। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, और उस दौर के गाने हम आज सुन रहे हैं और हमेशा सुनते हैं हर रात को, जिस दौर में मोबाइल फ़ोन नहीं थे और कितनी तकनीकी सुविधाएं जो आज के दौर में हमें मिलती हैं उस दौर में नहीं थी। लोग एक दूसरे के बहुत पास थे, एक दूसरे के हाल चाल लेते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, एक दूसरे से पूछते थे, जुड़े होते थे। बावजूद उसके, उस दौर में भी इंसान ख़ुद को अकेला महसूस करता होगा शायद। तभी तो ये गाना लिया है हमने, और ये गाना है फिल्म ग्रामोफोन सिंगर, फिल्म का नाम है ग्रामोफोन सिंगर से, और इसे आवाज़ दी है सुरेंद्र जी ने, और ये आई थी फिल्म 1938 में। दोस्तों, याद रखने की बात ये है कि ये फिल्म आज़ादी से पहले की है।

दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं वो फिल्म आई थी 1949 में, और ये फिल्म की इस फिल्म के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन जी, और इस क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में दिलीप कुमार साहब और कामिनी कौशल जी मुख्य भूमिकाओं में थे। और ये गाना जो है ये गीता दत्त जी, जो बाद में गीता दत्त हो गई थी, उस वक्त वो गीता रॉय हुआ करती थी, और इसको आवाज़ उन्हीं ने दी थी। और गाने के बोल लिखे थे कमर जलालाबादी साहब ने, और इसमें जो दूसरे कलाकार थे जीवन और श्यामा जैसे जाने माने कलाकार थे जो एक्टिंग के दिग्गज माने जाते हैं। बस आइए सुनते हैं हम भी वही पुराने दौर का ये खूबसूरत सा गाना, गीता दत्त जी की आवाज़ में, जो उस वक्त गीता रॉय हुआ करती थी।

और दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म शाहजहां का ये मशहूर गाना ए दिल बेकरार, जो आई थी 1946 में। ये संगीत और सिनेमा के इतिहास का एक अनमोल रत्न जिसे कहा जा सकता है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1946 में और उसके गायक थे KL सहगल साहब, जिनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल जी है। और इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद जी, गीतकार रहे कमर बारा बंकवी साहब, और इस फिल्म के कलाकार थे KL सहगल जी, रागिनी रहमान और नशीम बानो।

आइए सुनते हैं अपनी आजादी से एक साल पहले का ये खूबसूरत सा गाना, कुंदन लाल सहगल जी की आवाज में।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं, ये फिल्म आई थी 1948 में। फिल्म का नाम है अनोखी अदा और गाने के बोल हैं, ये प्यार की बातें, ये सफ़र भूल ना जाना। महान गायक मुकेश साहब की आवाज़ में एक बेहद सुरीला और सदाबहार क्लासिकल गीत है। और इस फिल्म में संगीतकार थे नौशाद अली जी और गीतकार थे शकील बदायूनी जी। दोस्तों, ज़माना उस दौर से इस दौर के बीच काफ़ी बदल गया है, तो आइए सुनते हैं उस दौर में प्यार की बातें कैसी रही होंगी और सोचते हैं कैसी रही होंगी।

और दोस्त रफ़ी साहब की आवाज़ तो न जाने कितने कितने कितने सालों से हमें हमारे साथ चल रही है और हमारी ज़िंदगी की का एक हिस्सा ही बन चुकी है। और ऐसी एक फ़िल्म है जो आई थी 1948 में, और फ़िल्म का नाम है मेला, और फ़िल्म का गाना आप अब अपने रेडियो सेट्स पर सुन सकेंगे।

दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन ये चक्र कभी भी नहीं रुक सकता। ये ज़िंदगी के मेले यूं ही चलते रहेंगे, अफसोस हम नहीं होंगे। यानी वक्त बदलता रहेगा, हम चले जाएंगे, फिर कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, लेकिन जो वक्त हमें मिला हुआ है उसको हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। उसमें कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, जैसा जिससे कि सालों बाद भी लोग हमें याद कर सके, जैसे आज की रात में हम याद कर रहे हैं पुराने नगमों के ज़रिए उन गानों को, उन लोगों को, उनकी लिखे गानों को और उनकी आवाज़ को। और अगला गाना है फिल्म दास्तान से। पहले ज़माने में दोस्तों जो जो अभिनय करते थे वही गाने भी गाते थे। इसी फिल्म में अभिनय किया सुरैया जी ने, और इसमें मुख्य कलाकार के रूप में राजकुमार जी थे और सुरैया जी थी। और इस फिल्म में जो ये गाना है इसको आवाज़ भी सुरैया जी ने ही दी है। नाम तेरा है ज़बान पर आई थी फिल्म 1950 में। आइए सुनते हैं इस गाने को अपने रेडियो सेट्स पर आकाशवाणी के ज़रिए।

और दोस्तों सोचिए उस दौर में ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती होगी ना, जब कोई छोड़ के चला जाता होगा, क्योंकि उस दौर में तो किसी के पास मनोरंजन के और साधन भी नहीं हुआ करते थे, और उसी याद में तड़प तड़प के कितने दिन बीत जाते होंगे। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं तो आगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमारे साथ है। फिल्म है मशाल, जो आई थी 1950 में, और इसका काफ़ी प्रसिद्ध गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आवाज़ दी थी अरुण कुमार मुखर्जी जी ने, जिन्हें अरुण कुमार के नाम से जाना जाता है, और इसमें म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था सचिन देव बर्मन जी ने, और इसके जो लिरिसिस्ट थे यानी गीतकार थे कवि प्रदीप जी, और इस फिल्म में जो नज़र आए थे अभिनय के करते हुए वो अशोक कुमार जी और सुमित्रा देवी थी। आइए सुनते हैं अरुण कुमार मुखर्जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना फिल्म मशाल से।

और दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं फिर से उसी पुराने दौर में, लेकिन इस बार आवाज़ है वर्सटाइल सिंगर रफ़ी साहब की, जिन्होंने ये आवाज़ दी थी आन फिल्म के लिए। ये फिल्म आई थी वर्ष 1992 में और ये भारत की शुरुआती टेक्निकल फिल्मों में से एक थी। इसके निर्देशक थे महबूब खान साहब और संगीतकार थे नौशाद अली जी और शकील बदायूनी जी इसके गीतकार थे। इस गाने में जो नज़र आए थे वो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब और अभिनेत्री नादिरा मुख्य रूप से नज़र आए थी। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में ये बेहद ही पुराना और ख़ास गीत।

और दोस्तों आइए अब सुनते हैं देखो जी बहार आई, यानी ये फिल्म आई थी 1955 की सुपरहिट हिंदी फिल्म आजाद का ये गाना है जिसे अब हम आपको सुनवाएंगे, जिसे आवाज़ दी थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। और ये फिल्म इसके संगीतकार थे सी रामचंद्र जी और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और स्क्रीन पर यानी जो पर्दे पर नजर आए थे मीना कुमारी जी, और फिल्म में मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार साहब दिखाई दिए थे। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा उसी फिल्म से। फिल्म का नाम था आज़ाद, फिल्म का नाम है आज़ाद, और ये उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी।

और दोस्तों, अब जो गाना आपके रेडियो सेट्स पर आने वाला है वो ओपी नैयर साहब तथा आशा भोसले जी की बेहद बेहतरीन जुगलबंदी का एक शानदार उदाहरण है। इस गीत के बोल जाने माने शायर जान निसार अख्तर साहब ने लिखे थे और इस फिल्म में जो कलाकार नज़र आए थे, ये फिल्म है बाप रे बाप, और इस फिल्म में जो कलाकार नज़र आए थे अभिनेत्री के तौर पर नज़र आई थी चांद उस्मानी साहिबा, और मुख्य भूमिकाओं में थे किशोर कुमार साहब, और ये फिल्म आई थी 1955 में। आइए आप ही सुनिए इस बेहद प्यारे गीत को जिसे आशा भोसले जी ने गाया था।

और दोस्तों, जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो रात हो या दिन का भी कोई वक्त हो, लेकिन वो वक्त लंबा नहीं लगता। वो जो वो वक्त होता है, वो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कब वो पल निकल गया। और दोस्तों, ऐसा ही एक प्यारा सा गाना, मेरे ऐ दिल बता, जो गाना हम लेके आए हैं, ये प्यारा सा जो गीत है वो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से लिया गया है। 1955 में ये फिल्म आई थी, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब की, लता जी की और मन्ना डे साहब की प्यारी सी आवाज़ में आप इस गाने को सुनेंगे। गोपी किशन और संध्या जी, इस एक क्लासिकल ड्रामा फिल्म थी जिसमें शानदार शास्त्रीय नृत्य देखने को मिला था। और ये गाना गाने के बोल और भावनाओं और दिल की कश्मकश को बहुत ही सुंदर तरह से बयां करते हैं। और शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने की वजह से इसकी धुन आज भी जो संगीत प्रेमी है उनके दिल में बसे हुए। आइए आप भी सुनिए और इस गाने को अपने दिल में उतर जाने दीजिए।

और दोस्तों आज गीत सुनहरे कार्यक्रम के आखिरी प्रस्तुति में सुनते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज़ में फिल्म मुनीम जी का ये गाना, जो फिल्म आई थी 1955 में और ये आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सच बात है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का AI के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप गीतों का कार्यक्रम गीत बहार, और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे करेगा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं पंकज उदास की इस खूबसूरत सी आवाज के साथ।

जनाब अब्दुल हमीद अदन साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदन साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

कहाँ बुझती है किसी की याद से ये रात की आग, कहाँ बुझती है किसी की याद से ये रात की आग। कोई तो है जो अंधेरों में भी जलाए रखता है चिराग। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम। अभी आपने सुनी पंकज उदास जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सी नज़्म। लीजिए सुनते हैं अगली पेशकश भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चिरागों का।

मिताली और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ के साथ ही फिलहाल गीतों और गज़लों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, यह आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः है, 4 बजने को हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नाम कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो के घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं। ये सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री मिनी एन की रागम कल्याणी में गायन। स्वाति तिरुनाल की रचना है। आपके साथ मृदंगम पर हैं MV चंद्रशेखर।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर 20 पर देशभक्ति गीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी का वक्त रहेगा 5:30। प्रातः 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास की विचारों पर। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज इसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 28। प्रातः 7:10 का वक्त है संगीतिका कार्यक्रम का। 7:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ₹8:45 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा विज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 9:15 पर। मिट्टी दी महक, इसका आनंद ले सकते हैं आप 9:30 पर। 10:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। प्रातः 11:10 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम सबरस का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 11:30। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित आने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है।

0: सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शोपानिया के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को सम्पन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को खोलना है। उन्होंने दूसरे देशों को भी चेतावनी देते हुए ईरान के साथ आर्थिक संबंध सीमित रखने को कहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमरीका की चेतावनी को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने की स्थिति में नहीं है। श्री गालिबाफ ने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी अमरीकी बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए नई प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में खेलो भारत अभियान पर भी चर्चा की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया की कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कम्बोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माही और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Himakshi Pawar. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2020.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी, जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण।

印度的立广播电台，听众朋友们，我们现在报告新闻。印俄商讨加强双边关系及扩大关键领域合作的方式。印度外交部。